102.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शक संवत 1948 के वैशाख माह की 24वीं तिथि है। तदनुसार 14 मई 2026 गुरुवार का दिन है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में

0: हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बताते हैं आज दिन भर में हमारे कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत

अब से कुछ ही समय पश्चात 6:10 पर आप सुन पाएंगे चिंतन। 6:15 का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:45 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। 7:20 का समय श्री रामचरितमानस गान का। 7:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। 8:00 दिल्ली से समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 का समय सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर संगम का। इसके पश्चात 9:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 का समय होगा देशगान का। 9:15 पर लोक संगीत का कार्यक्रम मरुवाणी। 9:30 पर फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। 10:00 का समय आकाशवाणी मुंबई से कार्यक्रम विविध भारती के कार्यक्रम का। 11:05 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 12:00 का समय NCERT के कार्यक्रम उमंग का। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। इसके पश्चात 1:00 आप सुनेंगे जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 1:05 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत। दोपहर 2:00 दिल्ली से मिड डे न्यूज। 2:15 पर दोपहर समाचार और 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। इसके पश्चात हमारी सायंकालीन सभा में शाम 4:00 आप सुन पाएंगे संदेश टू सोल्जर्स। 5:00 का समय होगा युववाणी का। इसके पश्चात 6:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार। 6:10 का समय होगा देशभक्ति फिल्मी गीत का। 6:30 का समय आकाशवाणी जयपुर से प्रसारण का, जिसके अंतर्गत आप सुन पाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार 6:30 पर। इसके पश्चात 6:45 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। 7:00 का समय किसान वाणी का और 6:40 का समय रहेगा जिले की चिट्ठी का। 7:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। इसके पश्चात 8:00 आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या। रात्रि 9:00 News@9। 9:15 पर राजस्थानी लोक संगीत और 9:30 का समय दिल्ली से कार्यक्रम कंट्री वाइड का। रात्रि 10:00 का समय होगा जयपुर से विज्ञान पत्रिका का और इसके पश्चात गजलों का कार्यक्रम सुन पाएंगे आप सुगम संगीत 10:30 पर। 11:00 का समय हिंदी में समाचार का और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM चूरू और ये समय है चिंतन का। चिंतन में आज हम जिस विचार पर चिंतन कर रहे हैं वो है कि घायल तो हर परिंदा आपको मिलेगा आज की दुनिया में, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। श्रोताओं, ये चंद लाइनें हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में परेशानियों से जूझता रहा है। शायद ही इस दुनिया में आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई हो। हो सकता है किसी को बचपन में हुई हो, किसी को युवावस्था में हुई हो, किसी को दोनों समय नहीं हुई लेकिन फिर जाकर वृद्धावस्था में हुई। यानी किसी न किसी समय व्यक्ति को परेशानी हुई है। समय सदैव परिवर्तित रहा है, ऐसा नहीं है कि एक समय जो हमें प्राप्त हुआ ठीक वैसा का वैसा समय हमें आगे मिलता चला गया। आपको ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में किसी न किसी समय कुछ तकलीफें महसूस की है, लेकिन बहुत से लोग उन तकलीफों से जूझ नहीं पाए और वो टूट गए, टूट के बिखर गए। लेकिन बहुत से लोग उन परेशानियों से जूझे और अपने आप को सही तरीके से बाहर निकाल लिया। आज के समय में हम बहुत सी खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं, फला व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली,

और अच्छी अच्छी पोस्ट पर जो लोग स्थापित होते हैं उनके बारे में इस प्रकार की सूचनाएं जब सुनते हैं तो फिर लगता है कि एक आम व्यक्ति जो किसी प्रकार की नौकरी में नहीं लगा है, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है, वो जीवित है, वो सड़क पर कचरे की बोतलें बीन कर भी अपना गुजारा चला रहा है, और एक तरफ जिस व्यक्ति के लिए पैसे की पूरी तरह से ये सुनिश्चितता है कि महीने के दिन उसे इतने पैसे मिलेंगे जिसमें वो अपना जीवन आराम से चला सकता है, और ऐसे व्यक्ति इस प्रकार का कदम उठाते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे हो सकता है उसको बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी हो, उसको चारों तरफ जीवन के रास्ते बंद मिले, निश्चित रूप से यही ख्याल आता है। लेकिन आप यकीन मानिए, और ये चीज सिर्फ हम अपने शब्दों के माध्यम से आपको नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपने अपने जीवन में हर पल इस चीज को देखा है, हर समय इस परिवर्तन को आपने महसूस किया है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है, खुद के जीवन में, दूसरों के जीवन में, कि समय एक जैसा नहीं रहता। आज कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत दुखी है, मानसिक रूप से बहुत पीड़ित है, उसको लगता है कि चारों तरफ बंद है दुनिया की गली, लेकिन दुनिया की गली कभी भी बंद नहीं होती। जब तक जीवन है तब तक जीवन में बहुत से रास्ते मिलते हैं, और ऐसे बहुत उदाहरण हमारे समक्ष उपस्थित हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इतने कष्ट सहे कि एक साधारण आदमी उसके बारे में सुनकर पढ़कर ही विचलित हो सकता है, लेकिन उन लोगों ने उनको झेला, और झेलने के बाद भी वो उन स्थितियों से अपने आप को निकाल कर ले गए। तो जो भी व्यक्ति ऐसे समय में जब उसको लगता है कि सब कुछ लूट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है, तो अगर वो इतना सोच ले कि रात ऐसी कोई भी नहीं हुई जिसकी सुबह नहीं होती, तो फिर मेरे जीवन की ये स्थिति भी ऐसी रहेगी, ये प्रकृति में संभव ही नहीं है, ये समय भी बदलेगा, ये समय भी निकल जाएगा, अगर इतना सा विचार कोई व्यक्ति कर लेता है तो वो जिंदगी से हारता नहीं है, बल्कि जैसा कि हमने विचार में व्यक्त किया कि घायल तो हर परिंदा यहां पर है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वो ही जिंदा है, तो इसलिए फिर से उड़ने की कोशिश करेंगे वो व्यक्ति अपने जीवन को जी पाएंगे। चिंतन में इतना ही, और अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

शुद्धम कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी यशुदास की आवाज में। फिल्म का नाम अय्याश। इस गीत को लिखा रविंद्र जैन ने और इसे संगीत से सजाया रविंद्र जैन ने। आप सुन रहे हैं FM चूरू से कार्यक्रम गीत बहार।

बनफूल इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोंसले लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम अली बाबा 40 चोर। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और इसे संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखने वाले गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

उस्तादी उस्ताद से इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आशा भोंसले उषा मंगेशकर की आवाज में इस गीत को लिखा दिलीप ताहिर ने और संगीत दिया राम लक्ष्मण ने।

बाजार फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा मीर तकी ने और संगीत दिया खयाम ने।

मासूम फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाज में, लिखा है गुलजार ने और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

मौसम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार की संपन्नता यहीं पूर्ण होती है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

भगवान शिव पार्वती को काकभुशुंड की सिद्धत्व प्राप्ति की कथा सुना रहे हैं। सुमेरु पर्वत के और उत्तर में एक अत्यंत सुंदर और मनोहारी नील पर्वत है। इस पावन स्थल पर काकभुशुंडी हरि का भजन, जप और यज्ञ तथा मानस पूजा करते हैं और वहां पहुंचे श्रद्धालु पशु पक्षियों को हरि कथा सुनाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम नमस्कार चूरू का। नमस्कार चूरू का आज का अंक लेकर मैं हूं आपके साथ आपका साथी राजीव कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए नमस्कार।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाउ
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाउ 9413366097।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से कार्यक्रम नमस्कार चुरू। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सीखने पर। देखिए, व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है और ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति पैदा होता है तब से सीखना शुरू करता है और जब तक उम्र रहती है तब तक सीखता ही रहता है। प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता है और उसके बाद भी सीखने का उसका जो कार्यक्रम है वो समाप्त नहीं होता, बल्कि आगे से आगे चलता रहता है। अब सीखने में हम बहुत सी ऐसी कलाकृति या फिर किसी कला के बारे में, किसी तकनीकी के बारे में, किसी प्रकार की जानकारी लेने के हिसाब से कुछ न कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होता है। हमारे माध्यम से बहुत लोगों तक वो सूचनाएं पहुंचती है तो उनके लिए भी लाभदायक होता है। जो कुछ हमने सीखा उसमें हमने अपना दिमाग और लगाया और उसके बाद फिर एक नई चीज हमने क्रिएट की और उसको लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार से संसार में विकास की ये लगातार प्रक्रिया चलती रही है और इस प्रक्रिया के माध्यम से ही हम अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं, वो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर तकनीकी क्षेत्र हो या फिर ज्ञान का क्षेत्र हो, खगोल शास्त्र का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो उसमें व्यक्ति ने सोचना शुरू किया, कुछ सीखा, सीखने के बाद उसको प्रोसेस किया अपने दिमाग में, कौन सा कार्य किस प्रकार से हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या कारण था, इसके बारे में जब विश्लेषण किया गया तो उसके पश्चात कुछ नया निकल कर आया। यानी सीखना और उस पर विचार करना, ये व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। तो सीखने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो किसी चीज को सीखने के लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, सीखने की लालसा, मन में क्यों, कैसे और क्या, ऐसे जब प्रश्न उठते हैं तभी नया ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन से ही हर चीज को जानने के लिए उत्सुक रहते थे, इसलिए इतने बड़े वैज्ञानिक बने। दूसरी चीज होती है इसमें अनुशासन, डिसिप्लिन व्यक्ति को रखना चाहिए तभी वो कुछ सीख पाता है। आज हमारे मन में जिज्ञासा उठी कि हम देखते हैं ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, लेकिन दो दिन बाद हम उसको छोड़ देते हैं तो वो जिज्ञासा वहीं समाप्त हो जाती है और उसमें विकास किसी प्रकार का नहीं होता। इसलिए जिज्ञासा के साथ अनुशासन आवश्यक है। तीसरी चीज है धैर्य। किसी चीज को हम सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम सब कुछ सीख जाएंगे, उसके लिए लगातार करना पड़ता है और फिर साथ में धैर्य रखना पड़ता है कि हाँ हम रोज कुछ सीख रहे हैं। आज एक सीखा, कल दो, कल तीन, परसों चार, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसलिए धैर्य की नितांत आवश्यकता होती है। चौथी बात अगर शामिल करें तो हम शामिल कर सकते हैं इसमें गलतियों से सीखना। जब हम सीखते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई गलती हम करते हैं, और गलती हम करते हैं और उसके बाद उसको बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते रहते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं, तो फिर कोई अर्थ नहीं है। अगर गलती की है तो फिर उससे सीखें, ये गलती क्यों हुई, कैसे हुई, और आगे ये गलती किस प्रकार से टाली जा सकती है, इसके बारे में जो विचार किया जाता है तब सीखने का प्रोसेस आगे बढ़ता है। पांचवी चीज हम इसमें शामिल कर सकते हैं, सकारात्मक सोच। ये सोच कि मैं सीख सकता हूं, ये विश्वास बहुत जरूरी है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, एक उम्र होने के बाद वो अगर छोटी सी चीज, जैसे मान लो कोई गाड़ी चलानी सीखनी है, कोई स्कूटर चलाना सीखना है, वो नहीं सीख पाते। कारण इसका क्या है? कारण इसका यही है कि उनकी एक तो इच्छा समाप्त हो जाती है, दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि उनको लगता है कि मैं अब इस उम्र में नहीं सीख पाऊंगा। और जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, तो फिर वो नहीं सीख पाता है। इसलिए किसी भी चीज को सीखने के लिए सकारात्मक सोच नितांत आवश्यक है। और छठी चीज हम इसमें शामिल कर सकते हैं, प्रैक्टिस, अभ्यास। केवल पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ लिया, सीख लिया,

लेकिन पढ़ी हुई सीखी हुई बातों का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है कि निरंतर अभ्यास से व्यक्ति निपुण होता है, इसलिए अभ्यास जरूरी है। एक बच्चा जब साइकिल सीखना शुरू करता है तो शुरुआत में कई बार गिरता है, लेकिन जिज्ञासा, धैर्य, लगातार अभ्यास, इसके कारण से अंत में वो संतुलन बनाना सीख जाता है, और यही सीखने की वास्तविक प्रक्रिया है। अब सीखने में जिज्ञासा, अनुशासन, धैर्य, सकारात्मक सोच और निरंतर अभ्यास, ये सबसे आवश्यक तत्व है। ये गुण आप में अगर हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ भी किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। अब बच्चे और युवा जल्दी कैसे सीखते हैं, उनमें जिज्ञासा अधिक होती है, मस्तिष्क अधिक लचीला होता है, डर कम होता है। एक उम्र होने के बाद व्यक्ति को डर लगता है, पता नहीं अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका परिणाम अगर विपरीत निकला तो क्या होगा, जबकि युवा और बच्चे इनमें यह डर नहीं होता है। अभ्यास और दोहराव उनमें बार बार दोहराने की आदत ज्यादा होती है, इसके साथ ही ऊर्जा और उत्साह ज्यादा होता है, और तकनीक का उपयोग भी आजकल के समय में बच्चे कर लेते हैं, इसलिए वो जल्दी सीखते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी उम्र में सीखना चाहे तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, वो सीख कर ही उठता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

श्रोताओं, आपने सुना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। बात करेंगे कार्यक्रम में अब हम प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आपने सुना है और जगह जगह पढ़ा है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद भी हम इस पर कितना ध्यान देते हैं, इसके बारे में आप अगर सोचेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बहुत कम लोग होते हैं जो इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक होते हैं, ध्यान देते हैं। बल्कि ये होता है कि सुन लेते हैं और प्रोटीन के नाम पर दूध पी लिया या फिर दाल खा ली या फिर कुछ ऐसे प्रोटीन के स्रोत जहां हमें महसूस होता है कि इससे हमें प्रोटीन मिल सकता है, वो हम खा लेते हैं और इतिश्री हो जाती है। लेकिन सही तरीके से कितना प्रोटीन हमें चाहिए और कितना प्रोटीन हम ले रहे हैं, इसके बारे में विचार हम बहुत कम करते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं करते। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों की भी यही स्थिति है। तो अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि प्रोटीन आवश्यक क्यों है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसकी मरम्मत का काम करता है। यानी जैसे मकान में कोई टूट फूट आ जाती है तो ईंट और गारे की आवश्यकता पड़ती है, मसाला तैयार किया जाता है बजरी से और सीमेंट से, उसके बाद उसकी लिपाई की जाती है। तो समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में भी अगर टूट फूट हो जाए तो उसकी मरम्मत के लिए जो मसाला हमें चाहिए वो प्रोटीन ही है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर प्रोटीन की मात्रा कम है तो शरीर में बाहर से आने वाले रोग तुरंत हमला कर देते हैं, लेकिन अगर प्रोटीन है, शरीर मजबूत है, तो ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा से ही हम काम कर पाते हैं। अब अगर प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं होगी तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, और काम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर जीवन कैसे चल पाएगा। इसलिए प्रोटीन आवश्यक है। बाल, त्वचा और नाखून के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है। इससे ही हमारे बाल, त्वचा और नाखून का विकास होता है। प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में अगर बात करें तो कमजोरी, थकान हो सकती है, मांसपेशियों का कमजोर होना शुरू हो सकता है, वृद्धि हमारे शरीर की रुक सकती है, बच्चे अगर हों तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और उनका कुपोषण स्वतः ही दिखता है, उनका विकास नहीं हो पाता है, बाल झड़ने लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब प्रोटीन के अगर अच्छे स्रोत की बात करें तो दालें, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही, मूंगफली, चना और राजमा, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, शाकाहारी स्रोत के रूप में। जो शाकाहारी है उनके लिए, मांसाहारी लोग जो है उनको अंडे से, मछली से, चिकन से, मांस से, इससे भी प्रोटीन मिलता है। इसमें देखने वाली बात यह होती है कि आज के समय में हमने प्रोटीन के स्रोत की तो बात कर ली, लेकिन वो स्रोत कितने सही हैं और सही रूप में हमें वो प्रोटीन दे पाएंगे या नहीं, ये भी एक प्रश्न होता है। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे तो दालें भी इस प्रकार की आती है कि उन पर पॉलिश की जाती है और उससे कई प्रकार के रोग भी वो अपने साथ लेकर आती है। यह स्थिति पनीर की रहती है। पनीर असली है या नकली है हमें पता नहीं चलता, दूध असली है, दही असली है नहीं पता चलता। इसलिए जहाँ तक हो सके ऐसे स्रोत से जिसमें हम विश्वास कर सके कि यहाँ हमें सही मिल रहा है, संभव हो तो हमारे सामने कोई दूध निकालने वाला हो जिनके पास गाय, भैंस, जो भी जिसका भी दूध हम पीते हैं वो रखता हो, उसके सामने

अगर हम खड़े होकर निकलवाते हैं तो ये संतुष्टि रहती है कि हाँ, दूध हमारे सामने निकला हुआ है, शुद्ध है। इसके अलावा ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आपको कम से कम इस प्रकार से अपने दूध को चेक करवाते रहना चाहिए लैब के माध्यम से, कि ऐसा नहीं हो कि हम किसी प्रकार का सिंथेटिक दूध इस्तेमाल कर रहे हों जिससे फायदे के बजाय हम किसी भयंकर रोग के शिकार न हो जाएं। उसके बजाय हम और बहुत से साधन हैं, जैसे मूंगफली है या फिर सोयाबीन है, इनसे भी आज के समय में बहुत से लोग दूध बनाते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय इसके कि हम नकली दूध पिएं। इसके बजाय कोई अच्छे स्रोत से और हमें इस प्रकार का दूध का विकल्प मिल जाए तो उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके साथ ही अगर मांसाहारी शोध की बात करें तो अंडे जो हैं वो भी नकली आ रहे हैं आज के समय में। इसलिए कोई सोचता है कि अंडे हैं, इनमें क्या मिलावट होगी, तो पूरे के पूरे अंडे ही नकली बनते हैं। इसके अलावा मांस की बात की जाए तो जानवरों को इस प्रकार का आज के समय में खाना मिलता है कि उनमें विभिन्न प्रकार के रसायन खाने के माध्यम से चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी इस प्रकार की बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जो हो सकता है हमारे लिए एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन जाए। इसलिए प्रोटीन आवश्यक है, लेकिन उसके साथ ही जागरूकता भी आवश्यक है कि जिस स्रोत से हम प्रोटीन ले रहे हैं वो स्रोत कितना ऑथेंटिक है, कितना विश्वसनीय है। प्रोटीन सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रति किलो वजन पर लगभग 0.80 से 1 ग्राम तक का प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे मान लो किसी का वजन 60 किलो है तो उसे लगभग रोजाना 48 से 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए, और संतुलित मात्रा में प्रोटीन लेना अच्छे स्वास्थ्य, ताकत और सक्रिय जीवन के लिए जरूरी है, आवश्यक है, निश्चित रूप से लेना चाहिए और इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। आप सुन रहे हैं नमस्कार चूरू।

शुद्ध ओम कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं नगीना फिल्म का गीत, जिसे गा रही हैं कविता कृष्णमूर्ति। और अगला प्रसारण हमारा आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से, जिसमें 8 बजे होगा समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़।

0: समाचार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और कालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव

0: निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों के उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
7: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति से।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से

ये रचना आपने सुनी सोनू निगम की आवाज़ में और अगली प्रस्तुति सोनू निगम की ही आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी जयपुर से, जिसके अंतर्गत सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर, मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी, हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इनके अलावा केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रतिमा अनावरण के बाद जनसभा का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री चार भुजानाथ मंदिर और मीरा मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे। इसके बाद वे जोधपुर पहुंचेंगे। वहां श्री सिंह रातानाड़ा चौराहे पर आयोजित पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे। समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और रासायनिक खाद के प्रयोग से बचने की अपील की है। उन्होंने युवा पीढ़ी से खेती और कृषि से जुड़ने के साथ स्थानीय पैदावार के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने को कहा है। मुख्यमंत्री कल जालौर के पंसेरी गांव में किसानों और पशुपालकों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है, ताकि राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान चलाकर प्रदेश की सभी पंचायतों के सुनियोजित विकास का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से भी संवाद किया। महिलाओं ने उनसे अपने अनुभव साझा किए। श्री शर्मा ने कहा कि राजीविका से जुड़ने के बाद राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं।
1: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना राजीविका की लखपति दीदी की योजना ये चलाई है। आज इसमें 22 लाख बहनों को ट्रेनिंग इसमें राजस्थान के अंदर मिली है और लगभग 17 लाख बहन हमारी लखपति दीदी बन गई है।
0: मुख्यमंत्री ने आज सुबह पंसेरी गांव का पैदल दौरा भी किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर आम जन को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस संबंध में शिकायतें मिलने पर संबंधित जिला कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर नियमित रूप से पानी बिजली आपूर्ति को लेकर साप्ताहिक बैठकें कर मॉनिटरिंग करें और संबंधित शिकायतों का विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ तुरंत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान आमजन को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचत के लिए सभी अधिकारियों को वाहनों का कम से कम उपयोग करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कार पूलिंग व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं।

0: इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार ने देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 187 अधिकारियों के तबादले किए। तबादला सूची में 70 से अधिक एसडीएम और 35 एडीएम, 8 जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और 16 विकास प्राधिकरण तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही सचिवालय और संयुक्त सचिव स्तर के 15 और विभिन्न विभागों के 20 निदेशक और अतिरिक्त निदेशक इनमें शामिल हैं। तबादला सूची में बीकानेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह को पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव तृतीय के पद पर, बीकानेर के अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन गोपाल राम बिरदा को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर लगाया गया है। डॉक्टर ज्योति चौहान का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक से चिकित्सा शिक्षा विभाग में संयुक्त शासन सचिव के पद पर तबादला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसानों के हित में लिए गए इस फैसले से उनके जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की भारत वापसी हुई है। इसका उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
1: ऐतिहासिक एंटिक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटिक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटिक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। चूरू में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव के बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी रहा। कल 5 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फलौदी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान करीब 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ। भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं बादल गरजने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी। हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 9:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत और अब कार्यक्रम मरुवाणी लोक संगीत का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहली रचना अब्दुल गनी की आवाज़ में।

ये लोक रचना आपने सुनी रफीक सागर की आवाज़ में, और अगली लोक रचना रफीक सागर की ही आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम मरुवाणी FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 9:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम दिल से दिल तक का। तो आज मैं हूं आपके साथ आपका साथी राजीव कुमार शर्मा। शुरू करते हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: शुद्ध, आप सुन रहे हैं FM चूरू से कार्यक्रम दिल से दिल तक। फेसबुक कमेंट्स पर आधारित है ये कार्यक्रम, तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहला कमेंट हमें प्राप्त हुआ है हमारे नियमित श्रोता चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा।

ये लिखते हैं, जो मिल गया है उसका गर्व ना करें और जो नहीं मिला है उसकी वजह से दुखी होने से बचें। जो लोग हमसे आगे हैं उनसे प्रेरणा लें, अगर हम उनकी बराबरी तक न पहुंच सके तो निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, हमसे पीछे भी बहुत से लोग हैं। जीवन में सफलता और असफलता के बीच संतुलन बनाए रखें। आपने बहुत अच्छा लिखा है सतीश जी, और हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका गर्व करना ये अपने आप में व्यक्ति की मूर्खता ही होती है, और जो कुछ नहीं मिला उसका दुख करना भी मूर्खता ही है। क्योंकि जो कुछ प्राप्त हुआ है वो अगर देखा जाए तो, हालांकि ये बात सबको पता है कि सब कुछ यहीं रहना है, जो कुछ कमाया है वो भी यहीं रहेगा, जो कुछ शारीरिक तौर पर हमने अर्जित किया है, एक अच्छा रूप, एक अच्छा शरीर, वो भी मिट्टी में मिलना है। इस सबको जानकारी होती है, ये ज्ञान सबको होता है, लेकिन इसके बारे में गौर नहीं करते। जब बारी आती है इस पर गौर करने की, उस समय व्यक्ति भूल जाता है और वो ये समझता है कि ये मेरा पैसा, ये मेरा मकान। तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति को वाकई निकलना चाहिए, और व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचा है तो उसके लिए किसी प्रकार की ईर्ष्या करना गलत है। प्रयास कीजिए और जो आपको मिला है उसमें खुश रहिए, क्योंकि वर्तमान में जो व्यक्ति जीता है सही मायने में जीवन वही है, और जो व्यक्ति भूतकाल और भविष्यकाल में जीता है वो सही मायने में जीता ही नहीं है। बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे कि फला समय में हम ऐसे हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, यानी भूतकाल की बातें कर रहे हैं। या फिर कोई व्यक्ति इस ख्याल में खो रहा है, मैं आगे जाकर इस प्रकार से कुछ बनूंगा, फिर मैं ऐसे जीऊंगा, और उसके चक्कर में वर्तमान खराब। इसलिए वर्तमान में जीना सीखें, वो सबके लिए सुखद होता है और अच्छा होता है। अगला कमेंट विक्रम सिंह कड़वासरा का, और इनके साथी हैं सचिन, सतीश, योगेश, युधव कड़वासरा और हनुमान सहरण। गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से लिखते हैं, और इसके साथ बता दें कि पहला जो हमने लिया था वो हमारे श्रोता हैं चंडीगढ़ से, सतीश अनेजा और विमला अनेजा, पूरा नाम हम उनका नहीं पढ़े थे इसलिए दोबारा बताया है। और ये है ग्राम कलाना से विक्रम सिंह कड़वासरा, लिखते हैं, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन अच्छा इंसान, उसके अच्छे विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही विचार हमारे पहले कमेंट की भी थे, जिसमें भी यही कहा गया था कि जो कुछ मिला है वो स्थायी नहीं होता है। ठीक ऐसा ही लिखा है विक्रम सिंह जी ने, खूबसूरत चेहरा भी एक समय बदसूरत हो जाता है, और ताकतवर जिस्म से भी ताकत एक दिन चली जाती है, यानी सब कुछ नश्वर है। अगले श्रोता लिखने वाले हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बैरिडी नाना जी, लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से और हर्षिता लाम से, सिर्फ नाम ही लिखा है इन्होंने। और हमारे ये श्रोता है लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा से लिखते हैं, और इनके साथ है हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी, रघुनाथपुरा, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से लिखते हैं, गलती इंसान का सबूत है, पेंसिल में रबर इसलिए लगा होता है क्योंकि लिखने वाला इंसान है भगवान नहीं, जो गलती करता है वो नया कुछ सीखता भी नहीं। मान लेना बड़ी बात, गलती सब करते हैं, पर माफी मांगने का जिगरा सब में नहीं होता। सॉरी छोटा शब्द है पर अहंकार से बहुत बड़ा होता है। दो बार मत दोहराओ, एक बार गलती होने पर मजबूरी हो सकती है, बार बार होना आदत है। समझदार वो है जो एक ही पत्थर से

दो बार ठोकर ना खाए। दूसरों की गलती उंगली उठाने से पहले याद रखना कि तीन उंगलियां तुम्हारी तरफ भी है, इसलिए पहले खुद को सुधारो, दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। और आगे लिखते हैं कि शाम का नया आए, शाम गलती माफ कर देता है पर नियत देखता है। देखिए, ईश्वर की बात हम करते हैं तो ईश्वर माफ करता है, लेकिन ईश्वर ने व्यक्ति को बनाया है, उसमें समझ दी है क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में हमें जब जानकारी होती है तो हमें अपना जीवन उसके अनुसार ही चलाना चाहिए। अगले श्रोता है रवि कुमार राहुल, ये लिखते हैं कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से। लिखते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सच में गर्व और भावनाओं से भरा पल है। जब से होश संभाला तब से रेडियो से जुड़ा हूँ, 45 साल होने को है रेडियो से जुड़े हुए। रेडियो से जुड़कर मैंने बहुत कुछ पाया, हजारों की तादाद में दोस्त भी रेडियो की देन है। मेरे लिए आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो नहीं बल्कि यादों का खजाना है। बचपन से लेकर आज तक इसके कार्यक्रमों ने मुझे ज्ञान दिया, मनोरंजन दिया और हर परिस्थिति में साथ निभाया। कभी मधुर गीतों ने दिल को सुकून दिया तो कभी जानकारीपूर्ण कार्यक्रमों ने सोच को नई दिशा दी। गांव हो या शहर, हर जगह इसकी गूंज सुनाई देती। एक केवल खबरें नहीं सुनाता बल्कि भावनाएं जोड़ता है, संस्कृतियों को संजोता और लोगों को एक साथ लाता है। मेरे अनुभव हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक रहे। आकाशवाणी सुनता हूं तो एक अपनापन महसूस होता है, जैसे कोई अपना बात कर रहा हो। रेडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। रेडियो के साथ उठता हूं, सोता हूं, जब सुनता हूं नाम अपना तो खुश होता हूं, फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी में आपा खोता हूं। मेरा नाता ही ऐसा कुछ है रेडियो से। जी हाँ जनाब, मैं रेडियो श्रोता हूं। बहुत खूब लिखा है, रेडियो श्रोता के तौर पर आपने। और आप लिखते हैं कि कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी में आपा अपना आपा खोता हूं, तो आपा खोने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपकी फरमाइश कभी पूरी होती है और कभी समय की सीमितता के कारण रह भी जाती है। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं, आप किसी भी आकाशवाणी के माध्यम से अपनी फरमाइश करते हैं तो ऐसा हो जाता है। अगले श्रोता है वेद प्रकाश मिड्ढा और अलका मिड्ढा, गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़। लिखते हैं पंछी कभी अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। क्या हम भी अपने बच्चों को वो सब दे रहे हैं जिससे उन्हें जीवन की मुश्किलों में लड़ने में मदद मिले, या सिर्फ उन्हें ऐशो आराम भरी जिंदगी दे रहे हैं? अपने जीवन रूपी बगीचे में उन चीजों को लगाएं जिन्हें हम अपने बच्चों में विकसित होते देखना चाहते हैं। ये चीजें हैं आशा, साहस, प्रेम, विश्वास और अपनापन। बिल्कुल सही लिखा आपने। अगर हम किसी को काबिल बना देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी दौलत से भी बढ़कर होता है। किसी को हमने कुछ सिखा दिया तो वो सीखने के बेस पे अपने आप को बहुत आगे लेकर जा सकता, अपना पूरा जीवन जी सकता है। अगले श्रोता है सुखविंदर सिंह जोड़ा, कृष्णा पार्क दिल्ली से। इनके साथ है सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेराय, सिर्फ इन्होंने नाम लिखे हैं। और ये श्रोता है विष्णु टेलर और इनके साथ है रितिका मस्कीन, वाणी आरव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता आरोही, प्रियांशी चूनी, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर से ये लिखते हैं। सड़कों का बढ़ता एक्सीडेंट सिर्फ खबरें नहीं, किसी का टूटा हुआ सपना, किसी माँ की चिंता, किसी परिवार का दर्द बनते जा रहे हैं। जिंदगी बहुत कीमती है, लेकिन अक्सर लोग सिर्फ कुछ मिनट जल्दी पहुँचने के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल देते हैं। तेज रफ्तार, मोबाइल का इस्तेमाल, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, गलत ओवरटेक और लापरवाही, यही हादसों की सबसे बड़ी वजह बन रही है। याद रखिए, गाड़ी की स्पीड कुछ पल का रोमांच दे सकती है, लेकिन एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकती है। इसलिए सावधानी सिर्फ नियम नहीं बल्कि परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। घर से निकलते वक्त कोई आपका इंतजार कर रहा होगा, इसलिए सुरक्षित लौटना सबसे जरूरी है।
हमेशा हेलमेट सीट बेल्ट का

प्रयोग करें, मोबाइल पर बात करते वाहन ना चलाएं, नशे की हालत में ड्राइव न करें, ट्रैफिक सिग्नल नियमों का पालन करें, बारिश धुंध या रात में अतिरिक्त सतर्क रहें, जल्दबाजी और गुस्से से वाहन चलाने से बचें। एक सड़क पर आपकी एक गलती किसी बेगुनाह की जिंदगी छीन सकती है, इसलिए धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए। काफ़ी कुछ आपने लिखा है और बहुत कुछ लिखा है और बहुत सही लिखा है। यातायात के नियमों का हमें पालन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम जब चल रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी तो दांव पर लगाते ही हैं, इसके अलावा दूसरे की जिंदगी भी दांव पर लगाते हैं, इसलिए हमें इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो हम अगर वाहन चलाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिल्कुल सेफ वाहन चलाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक, सुनवा रहे हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

ये लिखते हैं नमस्कार, तो हमारी ओर से भी आपको नमस्कार। और ये श्रोता है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से, लिखते हैं सच्ची सेवा वही है जो बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखे। बिल्कुल सही मायने में सच्ची सेवा वही है। और ये श्रोता है अनवर अंसारी, अहमदगढ़ मंडी पंजाब, मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद, सुराज, अख्तर, जासमिन, शकीला, सना, समा, हिना, राजिया अंसारी, इनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप जब लिखें तो बीच में कम से कम एक नाम के बाद कॉमा का उपयोग करें, ताकि पता चले कि अलग अलग नाम कौन से। और अगले श्रोता है बैरूलाल वाकतरिया, उन्हेल जिला, उज्जैन, मध्य प्रदेश से, लिखते हैं प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, एक या दो बार असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बस अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहें, हार न माने। बिल्कुल सही है, हार गया वो रह गया। और ये श्रोता है गांव कलमंडी खुर्द, जिला झालावाड़, राजस्थान से, अनूप सिंह नाथावत, हरी सिंह नायक, बीरबल राम इंदलिया, चौधरी दुर्गाराम बुडानिया, ये लिखते हैं सही रामनगर पीथी सर से, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार ही होते हैं जो व्यक्ति को किसी भी विकास के मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अच्छे विचार और अच्छे संस्कार नहीं हो तो व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन हो वो भी खो सकता है। ये श्रोता हमारे अगले हैं पद्मा ठाकिज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र। किसी ने सच कहा है कि हमारे लिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, लेकिन हमारे लिए जब यही आवश्यकता अधिक हो जाए तो सुकून भरे पल देने के बजाय हमारे दिल को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं में कमी लानी चाहिए, ताकि दो पल हम राहत के साथ जी सकें, क्योंकि इसका क्षमता से अधिक बाद जाना भयानक हो जाता है। आवश्यकता आविष्कार की निश्चित रूप से जननी होती है, और आवश्यकता अधिक हो जाए तो इससे हमें तकलीफ भी हो सकती है, ये कहना है सुदर्शन शाह का। देखिए, ये सब चीज़ें व्यक्ति पर निर्भर करती है। जो कुछ हमें प्राप्त है वो हमारे लिए अगर आज भी पर्याप्त नहीं है, यानी जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें अपर्याप्तता आज भी हमें महसूस होती है, तो आगे भी ये अपर्याप्तता हमें महसूस होती रहती है, क्योंकि जो कुछ प्राप्त हुआ है उसको आप अच्छे से महसूस करें, उसका आनंद लें, और जो कुछ प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए दुखी होने के बजाय उसका प्रयास हमें निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन उसके लिए दुखी होना गलत है। और अगर हम कुछ और पाने का प्रयास ही नहीं करते, ये भी सोच अगर रहती है, तो हम विकास नहीं कर पाते। विकास के जिस स्तर पे आज हम पहुंचे हैं वहां तक तभी पहुंच पाए जब कुछ और पाने की चाहत मन में थी। अगले श्रोता है सीताराम सुथार बोघेरा से, लिखते हैं नमस्कार। और इसके पश्चात हमारे अगले श्रोता है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान, लिखते हैं लिखते कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखते हैं खूबसूरत नगमे पर शामिल कीजिएगा, कार्यक्रम में हमने शामिल कर लिया है। अगले श्रोता है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए अपने, जिससे मनुष्य का जीवन कभी भटक

लगता नहीं सत्य के मार्ग से अपनी मंजिल पा लेता है। नकारात्मक सोच मनुष्य को दुविधा में डालता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जी हाँ, सकारात्मक सोच हमें आगे लेकर जाती है। ये छोटा है जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पार्लर विलिस। और अगले छोटा है गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वीर, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। और अगले श्रोता है श्रीकांत पारिक। और कार्यक्रम में अंतिम श्रोता जिसको हम कह सकते हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए, तो वो है पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन। लिखते हैं, इंसान का जल्दी जाग जाना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर वो चाहे नींद हो, वहम हो या फिर अहम हो। बहुत खूब, एक ही लाइन में आपने बहुत गहरी बात लिख दी है। व्यक्ति को नींद से जाग जाना चाहिए, और इसके साथ हम ये भी कहेंगे कि व्यक्ति को नींद में जाना ही नहीं चाहिए। नींद वो जो वहम की हो, जो अहम की हो, और जो किसी प्रकार के भी इस प्रकार के तत्व की हो जो कि व्यक्ति के लिए सही नहीं होता है। अब कार्यक्रम में चलते चलते ही आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, दिल से दिल तक का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी मुंबई से, जिसमें आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस

0: यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हों, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
0: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में, और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुन कर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाज़ें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूँगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे, उनकी आवाज़ सुना, आम अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था, मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, हाँ। कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना, रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी शुरू हुआ था, तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये, हाँ। कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबाने का फिल्म म्यूजिक का तो कहना ही क्या
0: जी।
1: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
0: जी,
1: और न सिर्फ आऊंगा
0: बल्कि हेड करेंगे
1: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
0: वाह वाह वाह,
1: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल में क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
0: क्या बात है, क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युवाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युवाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताज़ा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युवाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युवाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था, या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुँचा है?
1: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
0: बिल्कुल,
1: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
1: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
0: गंगा प्रसाद जी,
1: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
0: जी,
1: और
0: जी,
1: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ, और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। जी
0: बहुत

0: अति शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
1: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत गजल ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए, तो वो माहौल जो था बचपन का वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
0: हम यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
1: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्टल टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहाँ से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई, तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
0: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है, तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
1: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसडी जा चुके थे। हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
0: जी।
1: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआत की दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
0: क्या बात
1: है, जो इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
0: बिल्कुल
1: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी सब कुछ, तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
0: जी,
1: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे, तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
0: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं तो कैसा लगता है आपको?
1: नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे
0: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए,
1: हाँ,
0: अनुराधा,
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
0: है ना, ये गाना सुन,
1: मेरा पसंदीदा गाना है
0: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुनाओ,
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो वो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे,
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती थी,
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था। हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी होता था
0: जी, ये हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह,
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें, और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, थिएटर में जाकर फिल्म देखना, और स्कूल से भाग के भी देखना, और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्मी गा रहे हैं, कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था, और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
1: गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता था,
0: खुद गाते था
1: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुने भी बनाने लगा, और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
0: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका?
1: हाँ, मेरे कहने गायकी तो हमारे परिवार में, पिताजी और बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह
0: जी। रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
0: जी।
1: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था, हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई, और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
0: जी।
1: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई, और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था, और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की, और उस वक्त मैं ज़्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर, यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज़्यादा काम हुआ, और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
0: वाह वाह,
1: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
0: क्या बात है।
1: और एक नाटक जिसको बहुत ज़्यादा, जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो, उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था, मतलब
0: बिल्कुल।
1: आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो, और गणेश उत्सव हो, तो गणेश उत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेश उत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं,
0: वाह वाह,
1: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया,
0: गजब।
1: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका किशाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी, तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
0: क्या बात है,
1: इस नाम से किया, और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा, रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल, वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया, और उसके बहुत शोज हुए।
0: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
1: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
0: अच्छा।
1: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से
0: जा चुके थे उस दौर में जब आप
1: तो वो तो हमसे काफी से तो, लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
0: जी।
1: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
0: बिल्कुल।
1: फिर हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा।
0: जी जी बिल्कुल।
1: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
0: हाँ।
1: तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
0: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे, उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
1: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहाँ पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपके नाम सुना होगा।
0: बिल्कुल।
1: गणपत लाल डांगी,
0: हाँ,
1: जिनका हवा महल में
0: आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं।
1: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेस लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
0: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
1: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
0: जी,
1: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
0: अच्छा।
1: और आज भी शायद वही होगा
0: कि
1: अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
0: जी, तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
1: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
0: जी,
1: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
0: बहुत ही मशहूर
1: हिंदुस्तान का, उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
0: जी,
1: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा या, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पे लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी UPSC की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, UPSC में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
0: अच्छा,
1: ये 1980 की बात है।
0: क्या बात है।
1: 19 नवंबर, हाँ, 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
0: तो वहां तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
1: हाँ, बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकिर
0: जी,
1: इन लोगों के नाम से वो
0: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर,
1: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
0: बिल्कुल
1: पंजाबी राइटर्स,

0: सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पातर, ये सब लोग वहाँ पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पातर लुधियाना से, ये सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो, वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे,
1: हाँ
0: हिंदी
1: हाँ।
0: का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी
1: नहीं
0: मतलब,
1: थी जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: एक साल
1: जी, और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा,
1: जी
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे,
1: जी
0: जो सुरजीत पातर वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले मेरे सब कुछ में,
1: बिल्कुल।
0: मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरा जयपुर में शुरू हो चुका था,
1: जी
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ, और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार थे,
1: बिल्कुल
0: उनके
1: बिल्कुल।
0: नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तक लोग सुनते थे और सबसे लास्ट में उन्हें
0: हाँ
1: पढ़वाया
0: तो
1: जाता
0: जी,
1: था
0: और मेरा वो शुरुआती दौर था,
1: जी।
0: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी,
1: अरे
0: तो ये
1: गजब,
0: एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: क्या
0: मिला
1: बात है!
0: जो।
1: क्या वो
0: हाँ
1: गीत याद है आपको?
0: जो वो मेरे काफी पढ़ाई इधर उधर,
1: जी
0: तरन्नुम में सुनाऊँ उसको जी।
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।

0: है। और ये नवगीत का शुरू हुआ था, तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं
1: हाफती हवाओं
0: से,
1: से क्या बात है।

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी, और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: वो बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल।
0: हाँ हाँ।
1: बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम,
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सल्लम ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर संडे आता था,
0: हाँ।
1: पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
0: जी
1: पिताजी का

0: एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे
1: तो
0: या
1: आपके
0: था।
1: जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा
0: हाँ
1: है कि नहीं, क्या
0: हाँ
1: चल रहा है मन
0: तो
1: में।
0: बस वो उनको सूचना जरूर हो, और हमारे संवाद माँ से होता था,
1: जी
0: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना, साहब नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ हो, पिताजी से घर में जो था, लेकन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
1: जी जी
0: होते थे,
1: जी
0: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे,
1: वो
0: बताते
1: दौर भी
0: नहीं
1: ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ
0: थे।
1: करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी
0: नहीं
1: दे कर
0: बिल्कुल, ये
1: गई।
0: पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया,
1: जी
0: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार हैं, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से। अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, बड़ा
1: बाप
0: कोई
1: रे,
0: नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ के
1: आमने
0: सुना
1: सामने
0: है,
1: देखा। जी
0: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
1: बाप रे,
0: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है, और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा, तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूँ तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो,
1: जी,
0: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था, मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक
1: ये तो एक नया खुलासा है हमारे लिए।
0: था। मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते हैं सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना,
1: हाँ,
0: किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
1: तंग
0: आते
1: कर
0: जाते को
1: लेना।
0: तंग करना या मस्ती करना,
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
1: शिकायत आती
0: शिकायत माँ के पास आती थी कि
1: थी।
0: आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
1: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
0: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे,
1: हाँ
0: मैं
1: जी
0: नंबर दो था, तो
1: जी
0: पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे, घरेलू
1: बिल्कुल
0: नाम।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू।
1: जी,
0: खैर, तो वो छोटू की शिकायत
1: रोज आ रही
0: जो
1: है।
0: है मतलब हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन जो है आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी जो
1: प्रोटेक्शन।
0: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और
1: हाँ।
0: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो तो वो मैं भूल नहीं
1: उसका जिक्र ना ही करें तो
0: सकता। तो ये एक
1: अच्छा।
0: अच्छा बचपन बीता,
1: जी
0: और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
1: अरे
0: मतलब घर में
1: गजब।
0: वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे वो, हम
1: हाँ, वो अपनी दुनिया
0: वो
1: उनकी।
0: अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना खाए, सो गए, मतलब
1: हाँ।
0: बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में मां झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनकी
1: बिल्कुल।
0: कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं, एक था
0: हाँ,
1: बचपन,
0: एकता बचपन
1: क्योंकि
0: जरूर
1: ये
0: जरूर,
1: जो
0: बिल्कुल
1: बचपन के
0: बिल्कुल
1: जो दिन हैं उनके
0: बिल्कुल
1: उनके
0: बिल्कुल
1: नाम ये गाना है।
0: बिल्कुल जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: नहीं, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तुम्हें देखते से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है। हाँ? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ बैठता था।
0: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची ही नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, मतलब हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: उसमें
1: तो सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
0: जी जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात
1: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरूर लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे, मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और शायद फिर गजल ने मुझे भी अपना लिया।
0: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती गजलों में से कोई एक हमें सुनाइए।
1: मेरा सौभाग्य रहा यूनुस की ये जो गजल पंकज दास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
0: जो आपकी पहचान के साथ चिपकी हुई
1: है, वो जयपुर की गजल है।
0: वाह,
1: वो शुरुआत
0: कमाल।
1: हाँ,
0: ये मुझे नहीं पता था। ये मेरे लिए हैरत की बात है कि वो आपकी शुरुआती गजल है।
1: नहीं, यूनुस लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए वो, कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी
0: जी,
1: गजल की विधा को मैंने
0: अपने शिफ्ट किया है।
1: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते, सुनते सुनाते, उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुनाना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल, तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बोले, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब
0: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है,
1: तो खुद मैंने
0: मुश्किल भी है।
1: हाँ,
0: मुश्किल भी है,
1: मुश्किल भी है, तो उसको निभा ले जाना। और उसको तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें तो
0: जरूर सर, अरे स्वागत है बिल्कुल।
1: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
0: आपकी धुन अलग है।
1: मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे शहरों में पहचान दी वो ये गजल।
0: स्वागत है।

0: मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शाख। और ये खास शेर है वो।
1: स्वागत है।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला।
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है कि बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं
1: जी
0: रहा, अब नहीं, बहुत
1: जी
0: हो गया, है
1: जी
0: ना। ये
1: जी
0: आता है, फिर
1: सबके
0: करते हैं
1: साथ, सबके साथ
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये,
1: की
0: तो फिर
1: कहानी।
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कि कैसे
1: जी,
0: जान बचाते फिर रहे थे हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह
0: अमीर हो गरीब सबका। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान। अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना, होने से डरता
1: क्या बात है
0: है।
1: सर, हम
0: थैंक
1: बहुत खुश नसीब
0: यू।
1: हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप
0: नहीं,
1: मौजूद हैं
0: मेरा
1: और
0: आप लोगों का
1: आपसे ये
0: प्रेम
1: सुन
0: है
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: मेरी खुशनुमती। थैंक
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने
0: यू।
1: पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं, और जलंधर में 1 साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर,
1: जी,
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये कि मैं शुरू से ही

0: उम सिख रहा मतलब
1: जी जी बिल्कुल,
0: जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी। हाँ। बहुत अच्छा शहर था, बहुत प्यारे लोग थे,
1: अच्छा खान पान था,
0: अच्छा खान पान था, अच्छा मौसम था
1: जी,
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होमसिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापिस, है ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और वो सुन ली गई, मान ली गई, और मैं वापस अपने शहर में आ गया जयपुर।
1: वाह वाह।
0: तो मैं वहां फिर वापस शायद 5 साल जयपुर रहा।
1: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहां आपकी वापसी होती है और अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: वहीं मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूँ और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है
1: जी।
0: तो और क्या टीम थी वो वहां पे,
1: बिल्कुल
0: करीब बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और मुझे जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ
1: जी जी जी
0: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था।
1: जी जी जी
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था।
1: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे,
0: पला
1: तो आप
0: बड़ा
1: सब
0: था।
1: जानते थे
0: और फिर
1: और
0: उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले।
1: जी
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो तब था ही था। सब कुछ नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ। अभी तो नहीं हो रहा है, उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के एक दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने
1: कॉन्सर्ट्स
0: प्रोग्राम
1: होते
0: कर,
1: थे
0: कॉन्सर्ट होते थे,
1: जी।
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना।
1: जी जी
0: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया
1: वाह।
0: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों के द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह।
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब।
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी, यू नो उसके आश्चर्य की बात ये थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया। वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का।
1: जी
0: हाँ उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, और मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में।
1: अरे बाप,
0: तो गाने संस्कृत में है
1: जी,
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मैंने कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ कि इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है,
1: हाँ,
0: है ये,
1: तो बहुत मुश्किल काम है।
0: हम बहुत मुश्किल, तो वो एक, एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और समझे भी, मतलब गीत गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिग्रही उड़ीसा में
1: जी जी
0: तो वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहाँ पे। लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी। तो मैंने उसको बाकायदा एक, क्योंकि फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि
0: तो वो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
1: वाह वाह वाह। तो ये पूरा जयपुर का दौर था।
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी,
0: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडॉप्टेशन किया, वो किया, तो ये दो बड़ी थे कि नजर।
1: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए। इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका, हाँ, नाट्य समूह?
0: नहीं विकल्प, ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ
0: विकल्प अपने रंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम लोग करते भी रहे लेकिन वो सक्रियता नहीं रही
1: जी, क्योंकि रेडियो में आप पूरी तरह से अपने अपने आप को झोंक दिया था।
0: मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का
1: जी जी,
0: तो गोगोल का
1: उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल का,
0: नौटंकी की शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन भी किया, और वो भी किया।
1: तो संगीत जो है वो एक तो

0: बड़े संगीतकार थे
1: जी,
0: जो स्टाफ में थे, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती है,
1: बिल्कुल होती है
0: ना, जानते होंगे। और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है।
1: जी जी,
0: उस वक्त चार मौजूद थे और वो चार लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
1: जी जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी
1: कि नहीं नहीं आप करो।
0: हाँ, मतलब वरना ये होता नहीं है ये।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो चार कंपोजर हैं, आप स्टाफ में मौजूद हैं
1: तो आप उनको,
0: और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं।
1: जी जी,
0: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
1: हाँ,
0: एक बार मैं बताऊं कि जब महादेव वर्मा का गीत,
1: हाँ,
0: मैं नीर भरी दुख की बदली,
1: हाँ,
0: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना,
1: जी
0: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
1: जी,
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता किसी के लेके, उसको कोई पढ़ता था और गीत होता तो कोई गाता था,
1: वाह
0: तो उस
1: वाह
0: तरह का एक
1: वाह,
0: प्रोग्राम तो वो मैं करता था। तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया,
1: वाह
0: इनको
1: वाह,
0: स्टेज किया, स्टेज शो किया। तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये चीजें चलती रही लगातार, ये बहुत अद्भुत बात है। ये एक अलग पूरा एक पक्ष है, हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,
0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: सुनो जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।
2: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगा हर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से थोड़ी देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 12:00। 12:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार होंगे सज्जन कुमार एंड पार्टी। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। समय रहेगा दिन में 1:00। 1:05 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत। चर्चा होगी क्या कॉलेज की डिग्री ही सफलता की गारंटी है, किताबों से बच्चों की दोस्ती करवाएं। साथ ही आप जानेंगे व्यंजन विधि। दिन में 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने, आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर।

आकाशवाणी दिल्ली से रिले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ शाम 4 बजे हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5 बजे। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फेसबुक कमेंट पर आधारित कार्यक्रम बातें रेडियो की। शाम 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी शाम 7 बजे। चर्चा होगी किसान उत्पादक संगठन। एक और चर्चा होगी जायद सब्जियों की उचित देखभाल। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे शाम 7:30 पर।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे News@9 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे कंट्री वाइड और इनसाइट्स। विज्ञान पत्रिका रात्रि 10 बजे हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजलें आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए आनंद बख्शी के बोलों को आरडी बर्मन की धुन पर। फिल्म का नाम है अजनबी और आवाज किशोर कुमार की।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आनंद बख्शी के बोलों को अभी आप सुन रहे थे कल्याण जी आनंद जी की धुन पर। ये फिल्म थी बैराग और गायिका थी लता मंगेशकर। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। बातों बातों में आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और अमित कुमार की। गीत रचना योगेश की है और संगीत रचना राजेश रोशन की।

आप सुन रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, गायिका थी लता मंगेशकर। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं त्रिशूल फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

आशा भोसले और शब्बीर कुमार के गाए फिल्म सोहनी महिवाल के इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओ, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
2: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
2: जी
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
2: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है

0: बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारु और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।

0: हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
1: कमली और सोमारू चले घास लेने।
2: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
2: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
2: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
5: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
6: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
7: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछ

0: पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
2: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
3: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
4: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
3: आजा खेलते हैं।
4: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
5: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
4: अच्छा वो क्या?
5: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
4: हाँ
6: दूसरा क्या?
5: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
3: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की

0: आज हमारे सारे बचाव क्षेत्र अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ। आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं, फायरिंग।

0: मैं बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैनगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सज्जन कुमार एंड पार्टी के गाई लोक रचनाएं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के सुर में अभी आप सुन रहे थे सज्जन कुमार एंड पार्टी को। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर हैं। जोधपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगुवाई की। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इसके बाद श्री सिंह नागौर के मेड़ता सिटी पहुंचे। उन्होंने वहां मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद रक्षा मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री वापस जोधपुर जाएंगे। वे वहां रातानाड़ा में पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज डूंगरपुर जिले के प्रवास पर हैं। राज्यपाल बोरी स्थित गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन संस्थान पहुंचे। वहां वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आयोजित महिला प्रशिक्षणार्थियों के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उनका जनजाति क्षेत्र में कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित आशीर्वाद समारोह में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने एक आदेश जारी कर प्रोफेसर कैलाश डागा को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर और प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ को भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है। श्री बागड़े ने राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, हरियाणा निवासी यश यादव और विकास के रूप में हुई है। चारों को जयपुर से गिरफ्तार कर कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश

किया गया। बाद में उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली भेज दिया गया। जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपी यश यादव और विकास ने पहले सीकर जिले के एक कोचिंग सेंटर में साथ में पढ़ाई की थी। सीबीआई अब कोचिंग संस्थानों, बिचौलियों, छात्रों और आरोपियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है। इस बीच जांच का दायरा और बढ़ गया है। एजेंसी उन आरोपियों के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिन्होंने हाल ही में नीट परीक्षा उत्तीर्ण की और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया है। सीबीआई की एक टीम सीकर में और नेटवर्क से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर रही है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री और सदस्य तथा भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस पर विजय वीर सिंह ने किसानों को बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से खेत की मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जैविक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 16 मई तक चलने वाली इन परीक्षाओं का आयोजन प्रदेश के 167 केंद्रों पर हो रहा है। परीक्षा में 40,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके सफल आयोजन के लिए बोर्ड प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जैसलमेर की ओर से गड़ीसर तालाब से कार्यालय परिसर तक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। वॉकेथॉन को जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने रवाना किया। इसमें आकाशवाणी के सभी कर्मचारियों, शहर के प्रबुद्ध जन और विद्यार्थियों ने हिस्सा।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ,
2: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
1: कृषि, विज्ञान, कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
2: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
1: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
2: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413366097।
3: अंतराल के बाद बहनों हम फिर से प्रोग्राम की ओर चलते हैं और हम बात कर रहे थे कि कॉलेज की डिग्री हमारी सफलता के लिए आवश्यक है या नहीं है। तो इसकी बात हमने की कि कॉलेज की डिग्री है वो सफलता के लिए जरूर तो नहीं है, लेकिन कॉलेज की डिग्री करने से आपको बहुत सारे लाभ है वो हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर कह सकते हैं कॉलेज की डिग्री अगर आपने की है तो आपके वेतन का स्तर है उसमें काफ़ी हद तक बढ़ोतरी है वो हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपके समकक्ष हैं और जिन्होंने जो कोर्स है वो आपने समान कर रखा है, लेकिन इसके साथ ही आपके पास कॉलेज की डिग्री भी है तो उससे आपके वेतन की वृद्धि में जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही कॉलेज की डिग्री के साथ आपके कई ऐसे हैं अवसर हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पेशे में प्रवेश के लिए कॉलेज की डिग्री चाहे आवश्यक ना हो फिर भी उच्च शिक्षा आपको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत से अवसर प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए हम बात करें कि अगर आपने कॉलेज की डिग्री ले रखी है, साथ में आपकी पदोन्नति का फॉर्म अगर आपने भरा है तो प्रबंधन के जो पद हैं उसके आप योग्य हो जाते हैं, और कॉलेज की शिक्षा के बिना ये सब उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अगर आपने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की है तभी आपका प्रमोशन है वो हो सकता है, इसीलिए आपके पेशे में वृद्धि के लिए आपको इस चीज़ की आवश्यकता है वो हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉलेज की डिग्री आपके कोई काम नहीं आएगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक सफलता की गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन एक सफल बनाने में आपके कॉलेज की डिग्री है वो जरूरी हो सकती है।

इसके साथ ही कॉलेज की डिग्री अगर है तो बेरोजगारी की दर है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि कॉलेज के जब आपने पढ़ाई की है तो कुछ न कुछ काम या रोजगार आपको मिल जाएगा और उस रोजगार के माध्यम से आप अपने आजीविका है वो कमा सकते हैं और इस तरह से आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, किसी न किसी माध्यम से आप अपने पैसे की बचत है वो कर लेंगे। इसके साथ ही कॉलेज है वो आपको बहुत से संबंध बनाने में, आपके अलग अलग कौशल विकसित करने में आपको फायदा दिला सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं, इसके लिए कॉलेज की डिग्री कोई ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब अगर आप अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आप बहुत से बच्चों के साथ बैठेंगे, उन बच्चों के पास बेहतरीन उपाय हैं, वो आपके व्यवसाय के लिए आ सकते हैं, बहुत से अच्छे विचार हैं उन बच्चों के पास आपको मिल सकते हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने की उम्मीद रखते हैं। उनके विचार आपके विचारों को गति दे सकते हैं, आपके उस विचारों के पूरक भी हो सकते हैं और आगे चलकर हो सकता है कि आपके जो प्रोफेसर हैं कॉलेज के जो और अन्य जो कॉलेज में विज्ञापन आते हैं या कॉलेज में बहुत तरह के प्रोग्राम हैं वो रखे जाते हैं, उन प्रोग्राम के माध्यम से आपको अपने विषय की जानकारी है वो मिल सकती है और आप अपने जानकारी में उत्कृष्ट बन सकते हैं। हो सकता है आपके समकक्ष कोर्स करने वाला आपको उससे बेहतर जानता हो अपने व्यापार के बारे में, लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हैं बहुत से लोगों से मिलते हैं तो आप उस दौरान बहुत सी बातें हैं, बहुत से अनुभव हैं वो सीखते हैं और वही अनुभव आपके व्यापार में आपका साथ देते हैं। आपको समान विचारधारा वाले अन्य पेशेवर और व्यावसायिक नेताओं के संपर्क बनाने का अवसर है वो मिल जाता है। कॉलेज की डिग्री है वैसे कोई हम कह सकते हैं कि हाँ इतनी आपकी सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपका मकसद केवल अच्छे स्कोर या डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। असल में किसी भी एजुकेशन प्रोग्राम के तीन मकसद हम मानते हैं, कॉन्सेप्ट की समझ, स्किल डेवलपमेंट और इन्फॉर्मेशन, जो किसी आपके मार्क्स पर निर्भर नहीं करते हैं। यहाँ लर्निंग प्रोसेस भी अहम है, इसलिए केवल डिग्री पर फोकस करने के बजाय डिग्री को कारगर बनाने पर आपके द्वारा मेहनत की जानी चाहिए। सिर्फ आपके करियर बल्कि पहचान के मायने ही इससे बदल जाएंगे। दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उस सीख से उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। तो अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान बहुत सी कंपनियों से में इंटरव्यू देकर आते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि इस तरह की कोर्सेज वगैरह या इस तरह का व्यापार वो करना चाहते हैं, वहाँ आपको बहुत सी चीज़ें हैं वो बता दी जाएंगी। और ऐसे प्रोग्राम कॉलेज में अक्सर रखे जाते हैं, कॉलेज में आपको एक आजकल तो नया एक स्टार्टअप और चल गया है कॉलेज में, और उसके माध्यम से बच्चों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए फंड है वो भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ें आपको कॉलेज में जाने के बाद ही पता चलती है, कॉलेज जाने से पहले आप इन चीज़ों को नहीं जानते हैं कि वहाँ आपको इतनी सुविधाएं या इतना लाभ मिल सकता है। तो आप कॉलेज की डिग्री के साथ साथ अपने मनपसंद का व्यापार वगैरह कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज की डिग्री आपके लिए एक बेहतर विकल्प है जो आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके प्रमोशन के लिए या बहुत से ऐसे लाभ दिलाने के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकती है।

0: तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: जी बहनों, इस प्रोग्राम में भी चलते हैं और बात करते हैं किताबों की। जी बहनों, हमने और आपने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और जो किताबें हैं वो हमारे मानसिक और बौद्धिक स्तर को भी बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। लेकिन आज के हाईटेक युग में अगर हम बात करें किताबें की, तो आज का बच्चा है वो किताबों के महत्व को भूलता जा रहा है। आजकल बच्चों के लिए बुक्स सिर्फ स्कूल कोर्स की पढ़ाई तक ही सीमित रह गई है। ऐसी स्थिति में बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना अगर हम चाहें तो एक बड़ा काम है हमारे लिए। अचानक कुछ दिनों में ही हम बच्चों के अंदर किताबों के लिए लगाव पैदा नहीं कर सकते हैं। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी किताब को पढ़ने में रुचि ले, तो इसके लिए हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी और बच्चों के सामने उस समय किताबें रखनी पड़ेगी जब वो किताब के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। वो छोटा बच्चा होता है, उसी समय जब हम इसकी शुरुआत करेंगे, अगर हम कहें कि 2 साल के आसपास ही अगर हम किताबों की शुरुआत बच्चे के सामने करें, तो बच्चा किताबों के प्रति रुचि रखना हो सकता है शुरू कर दे। लेकिन इसके लिए हमें माता पिता होने के नाते हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है। अगर हम उन जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे तो हो सकता है बच्चा किताबों में इंटरेस्ट ले सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे किताबों से प्यार रखे, तो मोबाइल की बजाय हाथ में हमें भी किताब उठानी पड़ेगी। हम अक्सर होता है कि माता पिता जब भी फ्री होते ही वो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और बच्चे भी यही देखते हैं कि जब भी मम्मी पापा फ्री हुई मोबाइल लिए, तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। तो बच्चों के सामने अगर आप खुद किताब पढ़ेंगे तो बच्चा भी उनमें इंटरेस्ट लेगा और किताबें पढ़ने शुरू करेगा। हाँ, उसका लेवल है वो थोड़ा अलग हो सकता है। बच्चे अपने लेवल की बुक पढ़ते हैं और बड़े अपने लेवल की, तो ये चीज अलग है। लेकिन जब वो सामने वाले को देखता है कि हाँ किताबें पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, तो बच्चा भी पढ़ना चाहेगा। जब आप बच्चे को प्री स्कूल से पहले ही किताबें पढ़कर या देखकर सुनाना शुरू कर देते हैं, तो इसका इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे किताबों की ओर बढ़ने लग जाता है। और इसके लिए आप बच्चों के लिए टाइम टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम टेबल एक तरह से बोझिल हो जाता है। आप ये निश्चित तय कर सकते हैं कि आपको दिन में या सोने से पहले रात से पहले आपको ये किताब पढ़नी है और प्रतिदिन आपको एक चैप्टर है वो पूरा करके हमें सुनाना है। अगर बच्चे के सामने ऐसी नियम रखेंगे तो बच्चा निश्चित रूप से उसको पढ़ेगा और आपको सुनाएगा। और आप भी उससे संबंधित प्रश्न बच्चों को करें, आप भी पढ़ें उनके सामने, और धीरे धीरे अगर आप सुनाएंगे तो बच्चा भी पढ़कर आपको सुनाने लग जाएगा और इस तरह से उसका इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे किताबों की ओर हो जाएगा और वो आपसे किताबों की मांग भी करने लगेगा। रीडिंग की हैबिट डालने की बजाय आप उनकी ड्यूटी बनाएं, क्योंकि ड्यूटी है वो निभानी होती है और ड्यूटी के प्रति बच्चा है वो पंक्चुअल भी होता है कि नहीं। ड्यूटी है वो एक तरह से जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी निभाने के लिए हर संभव प्रयास है वो करने चाहिए। ये बात जब बच्चों को बताएंगे तो अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे। और इसके बेहतर होगा कि आप रीडिंग का टाइम फन टाइम बनाएं और साथ में अच्छा वक्त गुजारते हुए किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी किताबों बच्चों के सामने पढ़ें, किताबों की अच्छाई है वो बच्चों के बताएं और साथ ही ये बताएं कि ऐसे बहुत से बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने अच्छी किताबें पढ़ी और उनके बारे में पढ़कर हम भी अपने भविष्य को संवार सकते हैं। जब ये बातें बच्चों को बताई जाएगी तो बच्चा निश्चित रूप से किताबों की ओर आकर्षित होगा। लेकिन आकर्षित होने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमेशा उम्र के हिसाब से बच्चों के लिए किताबें चुनें। अगर आप कम उम्र के बच्चों के लिए हैवी और अधिक टेक्स्ट वाली बुक देंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, उन्हें बोझिल सा लगेगा। इसलिए उन्हें अच्छे ग्राफिक वाली किताबें कर दे, और यही नहीं, किताबों को ऐसी जगह रखे जहां से वो आसानी से निकाल कर पढ़ सके। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किताब उन्हें मिलती नहीं है, तो बच्चों को ऐसी जगह किताबें रखें तो उनका जब मन हो तो लाके पढ़ सके। इसके साथ ही उन्हें कहानियां सुनाएं। बच्चों को कई बार होता है कहानी की किताबें लाके दे, कम से कम एक आधे घंटे तक आप उन्हें कहानी पढ़कर अवश्य सुनाएं। और बच्चे हैं वो बहुत चंचल होते हैं, उनका ध्यान बहुत जल्दी भंग हो जाता है, अतः उन्हें एकांत जगह में कहानी सुनाएं और अपना जो घर है वो ऐसे इस जगह चुने जहाँ पर कहानियाँ सुनाते वक्त आप अपना कमरा है वो बंद कर ले तो कोई आवाज़ नहीं सुने, क्योंकि कई बार होता है घर ऐसी जगह पर होता है जहाँ ट्रैफिक का आवागमन रहता है तो आवाज़ें आती रहती है। तो आप घर में ऐसी जगह चुने जहाँ पर आवाज़ नहीं हो और बच्चा शांति से आपकी बात को, आपकी कहानी को सुने। और बच्चों की तरह तरह की किताबें पढ़ने के लिए दें, इससे उसमें की किताबों के प्रति रुचि है वो बढ़ेगी। इसके साथ ही कई बार आप बच्चों को लाइब्रेरी भी ले जाएं, आप अगर शहर में आपकी लाइब्रेरी रहती है, स्कूल की लाइब्रेरी है या कहीं भी आपके आसपास लाइब्रेरी है, तो वहाँ बच्चों को लेके जाएं। बच्चे तरह तरह की किताबें देखेंगे तो उन्हें लगेगा, उनका कवर अगर सुंदर है तो बच्चों को लगेगा कि हाँ इसमें कुछ अच्छा मैटर हो सकता है, वो पढ़ने की इच्छा जाहिर करेगा। तो बच्चों को किताबें खरीदते समय भी उन्हें इन्वॉल्व करें कि वो किस तरह की किताबें पढ़ना चाहते हैं, किस तरह की किताबें देखना चाहते हैं, और उनसे पूछे कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, और धैर्य से काम ले। अगर बच्चा एक ही किताब बार बार पढ़ना चाहता है तो उसे वैसा करने दे। ये नहीं है कि हम उन्हें डांटते रहें कि क्या एक ही एक चीज़ को लेकर बैठ जाते हो, ऐसा नहीं। वो दोहरा कर जल्दी चीज़ों को सीखता है, हो सकता है उसका इंटरेस्ट उसमें हो तो उसे पढ़ने दीजिए। जहाँ जाए वहाँ से बच्चे के लिए किताब जरूर लेकर आएं, तो उसके लिए एक अच्छा गिफ्ट होगा और किताबें पढ़ने की आदत है वो उसमें हो जाएगी। क्योंकि आजकल कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी के समय में बच्चा है वो किताबों से बहुत दूर हो गया है, और जीवन की सच्चाई है उनके बारे में वो नहीं जान सकता है, उनकी रचनात्मकता है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अगर धीरे धीरे हम बच्चों को इस तरह से किताबों की ओर लाएंगे तो वो किताबों के महत्व को समझेगा और धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता है वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि आजकल कुछ बच्चों को पूछा जाता है तुरंत वह मोबाइल में देखता है और तुरंत वो बताने का प्रयास करता है, खुद से सोचता नहीं है, खुद से कोई विचार नहीं करता है, उसके सोचने विचारने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर बच्चा किताब पढ़ेगा तो उसके दिमाग में बहुत से विचार आएंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने किताबों में बहुत से विचार पढ़े हैं, सुने हैं, तो वो निश्चित रूप से उस पर विचार करेगा और अपनी लेखन शैली या रचनात्मकता है उसको बढ़ाएगा। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स होने के नाते हमें कुछ जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ेगी, और वो है कि किस तरह से हम बच्चों को किताबों के प्रति रुचि पैदा करें और किस तरह से उन्हें किताबें पढ़ने के लिए तैयार करें।

इस प्यारे से गीत के बाद बहनों हम प्रोग्राम के चलते हैं और बात करते हैं अपने जीवन में हम कैसे हैं कि छोटी छोटी बातों से खुशी ला सकते हैं, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर लोग तनाव और थकान महसूस करते हैं, और लेकिन हम कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनको अपना कर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ सकते हैं। उनकी हम बात करें तो बहनों, हम सोशल मीडिया पर दिन भर मैसेज करते रहते हैं, लाइक और कमेंट के जरिए लोगों से बात करते रहते हैं, लेकिन इससे मिलने वाली खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। असली सुकून और अपनापन तब महसूस होता है जब हम किसी से आमने सामने या दिल से बातचीत करते हैं। इसलिए दिन में एक बार किसी अपनों से बात जरूर करना चाहिए, जाकर उससे मिलें किसी भी अपने से और उससे बात करें, ताकि आपका मन हल्का हो जाए और किसी तरह की परेशानी अगर हो मन में तो वो निकल जाए और आपका दिल है वो खुश हो जाए। अक्सर हमें लगता है कि किसी से मिलना या बाहर जाना थकाने वाला होगा, लेकिन

आदमी हम खुद को ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। ऐसे में अगर कहीं जाने का मन भी हो तो थोड़ी देर के लिए ज़रूर जाएं, ऐसे ना सोचे कि थकान हो जाएगी या जाने में समय लगेगा, समय खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, आपको वहाँ जाकर निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और आपका मन खुश होगा। तो जैसे भी हमारा मन खुश हो वैसे रहना चाहिए, क्योंकि आजकल का जीवन है ऐसे ही बहुत भागदौड़ भरा हो गया है। वहाँ एक पल भी अगर हमें सुकून का मिले तो हमें वो जी लेना चाहिए। बड़े होने के बाद अक्सर लोग खुल कर जीना छोड़ देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। अपने पसंदीदा काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमें खुशी मिलती है। इससे ज़्यादा खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि वो हमारा पसंद का काम है। इसलिए अगर आपको जो भी काम पसंद हो, चाहे डांस करना हो, चाहे ड्राइंग करना हो, या कुछ भी जो आपको खुशी देता हो, आप अगर करेंगे तो आप बिल्कुल दिन में खुश रहेंगे। और अगर आप खुश रहेंगे तो आप ऊर्जावान रहेंगे, और ऊर्जावान रहते हैं तो घर का काम भी बड़े ही खुशहाली से हम कर सकते हैं। तो हम छोटी छोटी खुशी ढूंढें ताकि हमारा परिवार है वो खुशहाल रहें। और हर दिन कोई छोटे छोटे पलों को हम नज़रअंदाज हैं वो कर देते हैं जो हमें खुशी देते हैं। जैसे हमें लगा कि किसी बात पर बहुत तेज़ हंसी आई, लेकिन हम मर्यादा की वजह से तेज़ हंसते नहीं हैं। कई बार मौसम अच्छा होता है और हम मस्ती के साथ डांस करना चाहते हैं, लेकिन वही घर परिवार की मर्यादा की वजह से हम उसको भी छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं होती है, इन छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है। जब आपका मन करे आप उस काम को करिए जिससे आपको खुशी मिलेगी, और उस खुशी का ठिकाना कुछ अलग ही होगा। क्योंकि जो आप मन से काम करते हैं और जो खुशी आपको अपने मन से काम करने में मिलती है, वो दिखावे की खुशी में बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आपका मन करे वैसा आप काम करें और आप खुशहाल रहें, क्योंकि खुशहाल रहने से आपका परिवार है वो खुशहाल रहेगा, और परिवार खुशहाल रहेगा तो आप दिन भर कार्य है वो प्रगति की ओर जाएगा।

जी बहनों, इस प्यारे से गीत के बाद फिर से प्रोग्राम की ओर चलते हैं और बात करते हैं गर्मी के मौसम की। जी बहनों, गर्मी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे मौसम में हमें अपने घर के जो पौधे हैं उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता है, क्योंकि जो घर के पौधे हैं वो हमें ठंडक देते हैं और अगर वही मुरझा जाएंगे तो हमें थोड़ी सी गर्मी का एहसास ज़्यादा होने लग जाएगा। तो गर्मी में मौसम भले ही हम पौधों को धूप में ना रखें, लेकिन गर्मी में मौसम में इतनी ज़्यादा होती है कि जो गर्म हवाएं हैं वो पौधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और अगर पौधों को सुबह पानी दिया जाता है तो दोपहर तक उनकी पत्तियां हैं वो कुमला जाती है। यह एक भी कारण है कि पौधे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यदि आपको अपने घर आंगन में, बालकनी में या टीन शेड के नीचे जहाँ भी आप पौधे रखते हैं, फिर भी आपको थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है पेड़ पौधों की, कि उन्हें धूप छाया की व्यवस्था है वो सही रखें। कुछ पौधे हैं धूप और छाँव दोनों में रह सकते हैं, लेकिन कुछ पौधे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ छाया की आवश्यकता होती है, तो उन्हें धूप में ना रखें। आप अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो उनके ऊपर जो हरा पर्दा आता है या ग्रीन जो कह सकते हैं पर्दा वाले पतली परत वाले जो पर्दे आते हैं उन्हें लगाकर उनके लिए छाया की व्यवस्था करें, या फिर ऐसे दीवार के पास रखें जहाँ पर सीधी धूप ना आती हो। तेज़ धूप लगने से वो कुमला जाते हैं, और गमलों को ज़मीन पर सीधे रखने के बजाय स्टैंड पर रखें ताकि नीचे से जो हवा मिलती है वो मिलती रहे, और छोटे और नाजुक पौधे हैं वो बड़े पौधों की छाया में रखें। इससे उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा है वो मिलती रहेगी और वो जल्दी मुरझाएंगे नहीं। मिट्टी सूखने और दरारों से भी बचाव के लिए उनके

लिए उपाय करना जरूरी है। इसके लिए गमले 2 भाग केंचुए की खाद और 2 भाग मिट्टी मिलाएं, और जिससे मिट्टी भुरभुरी रहेगी और पानी को संचारित करने की क्षमता है वो बढ़ती रहेगी। इसके साथ ही जो खाद है उसमें भी आप बदलाव कर सकते हैं। गर्मी में वर्मी कंपोस्ट है वो सबसे अच्छा विकल्प है। यह पौधे को पोषण देता है और मिट्टी की नमी है वो बनाए रखता है। इसके लिए छाछ और पानी के 1:5 के अनुपात में मिलाकर महीने में 1 या 2 बार पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती है उसे भी अच्छी तरह धोकर सुखा लें और उसके बाद पेड़ पौधों की जो मिट्टी है उसमें मिला दें। इससे उनको पोषण मिलेगा और जो खाद है वो भी उससे मिलती रहेगी। तो बहनों, अपने पेड़ पौधों की सुरक्षा करें ताकि आपको भी गर्मी का एहसास कम हो और आप भी अपना ध्यान रखें, गर्मी में लगातार पानी पीते रहें और दोपहर में या के समय जब बहुत ज़्यादा धूप होती है उस समय घर से बाहर निकलने से थोड़ा परहेज करें और अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। फिर अब कार्यक्रम से समापन का समय आ गया है, तो बहनों कार्यक्रम से दे इजाज़त संगीता रोहिला को। नमस्कार।

0: His visit to China. Among the prominent executives accompanying the president are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz. In women's singles, world number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7 seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last 8. Meanwhile, top seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last 8. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheesan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
3: In strengthening cooperation against terrorism.
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
3: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
4: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और

0: गढ़ हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया तो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि

0: व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए रूप कुमार राठौड़ और हेमा सरदेसाई को। फिल्म का नाम है हीरो हिंदुस्तानी।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: आप सुन रहे हैं तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं शक्ति फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की गाई फिल्म दिल तो पागल है के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय दिन के 3:01 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 4 बजे दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से रिले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू

0: आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स.
0: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल. अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है
0: जी.
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत की आजादी के लिए लड़े. उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल. और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना. तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
0: जी,
1: मेरे बचपन के तरफ, जहां पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था. जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर, की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है नहीं तो नहीं. जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं. बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
0: जी.
1: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा. तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया. बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया. जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊं, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं करना है तो MBBS ही करना है. तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे.
0: अच्छा.
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह. तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी. इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था. सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग. तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का. लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे. लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी, कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता है, ये बात होती है.
0: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने.
1: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी. सो दैट वाज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए. मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट IT कंपनीज में.
0: हाँ.

0: लाइफ तो सेट थी एज अ यंग पर्सन. मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम. एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है. बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम. सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की. उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया. एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, एसएसबी देने के लिए. और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, एसएसबी के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड. और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 days ऑफ SSB. वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा.
1: अमेजिंग. और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें.
0: जी बिल्कुल.
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना. तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की. इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित.

0: जी दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी।
0: वाह।
1: और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है, बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है। क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विद पोस्टिंग्स, आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है, तो सारी

0: चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है.
1: जी
0: सो दैट इज दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें.
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए. लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सेकंड सेकंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकंड का बहुत बहुत मेजर इम्पोर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग. हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है. तो इस नज़रिए से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है, मतलब आपकी नज़र में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनैलिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं.
0: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जांपल. और तीसरी चीज है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी.
1: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहाँ भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं. आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं. तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
0: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है. फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है
1: जी.
0: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है. तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है. सो एज अ वुमन अगर आप मुझे

0: पीछे, तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर. बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है. तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए. आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं.
1: जी बेहतरीन. मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है. तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है. हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर. और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक
1: डे परेड,
0: हां जी,
1: उसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था। और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह, वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने। सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सकें। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर

0: से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है, क्योंकि एक और चीज मैं बताती हूँ आपको. जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का, लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी. तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी. तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है.
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया. बहुत ही सुंदर. अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल, और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है. एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल, और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का. पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया.
1: क्या बात है.
0: सो उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है, तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं.
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है. सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है.
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ. और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें. और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है. और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है. और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे. और जब मेरी पहली जंप थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है. तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है. बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है
1: जी,
0: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है. लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था. तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूँ.
1: ओह माय गॉड.
0: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे. क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो, आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है, और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो.
1: इनर स्ट्रेंथ.
0: वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है. दैट इज एक्चुअल फ्रीडम. एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो.
1: कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा, जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है. आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव. और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
0: जी.
1: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
0: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
1: जी.
0: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है, और वो जिंदगी ही क्या जहां पे फेलियर्स

0: हो,
1: हाँ
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है, रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में, जो हर किसी को जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है। अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो,
1: जी
0: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो किसी भी रीज़न के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे मेरे नज़रिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है,
1: जी
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है। केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफ कैट और सी डी एस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं, तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया। तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी, तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना ट्वेल्थ पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफ कैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफ कैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेज में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल इन ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही
1: जी,
0: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

0: संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशंस उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड।

0: आएगी। देखिए फेलियर्स तो आएंगे, वो सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है। क्योंकि बाहर कॉर्पोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापें
1: जी,
0: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए। किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है। बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का। धन्यवाद, जय हिंद,
0: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

जी हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 FM और शुरू हो चुका है प्रोग्राम युवाणी, जहां आज आपके साथ है आपकी रेडियो साथी शालिनी। तो युवाणी सुनने वाले तमाम श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ।
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413360977।
2: जी हाँ दोस्तों, आवाज़ों की इस खूबसूरत दुनिया में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बातें रेडियो की आज का खास सेगमेंट होता है जहाँ बात होती है आपकी, हमारे विचारों की और उन एहसासों की जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुँचते हैं। जी हाँ दोस्तों, और सेगमेंट जो है वो और भी खास हो जाता है जब हम मिलकर एक बेहद खास और दिलचस्प विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, मोबाइल फोन अब हमारी हथेली में पूरी दुनिया लेकर घूमता है। इंटरनेट ने हर जानकारी को बस एक क्लिक की दूरी पर ला दिया है। सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, वीडियो प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में आज इंसान पहले से कहीं ज़्यादा डिजिटल हो चुका है। लेकिन इन सब बदलावों के बीच एक आवाज़ जो है वो आज भी हमारे दिलों में उसी अपनेपन के साथ गूंजती है। एक साथी आज भी सफ़र में, खेतों में, दुकानों पर, घरों में और अकेलेपन में हमारा हमसफर बनता है और वो है साथी रेडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की बातें रेडियो की का हमारा जो टॉपिक रहता है चर्चा का, वो भी कुछ खास ही है जो कि रेडियो से जुड़ा हुआ है। टॉपिक है डिजिटल युग में भी रेडियो क्यों है खास, क्योंकि इसकी खासियत क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर इतने आधुनिक दौर में भी रेडियो क्यों जिंदा है, क्या वजह है कि नई नई तकनीकों के आने के बावजूद भी रेडियो की लोकप्रियता कम नहीं हुई, क्यों आज भी लाखों लोग सुबह की शुरुआत रेडियो की आवाज़ से करते हैं और कैसे रेडियो आज भी सूचना, मनोरंजन और समाज को जोड़ने का सबसे भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। दोस्तों, रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये भावनाओं का माध्यम है, ये वो दोस्त है जो बिना देखे भी रिश्ता बना लेता है, जिसकी आवाज़ में अपनापन होता है, जिसकी बातों में सच्चाई होती है और जिसकी मौजूदगी अकेलेपन को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है हमारा रेडियो। और आज की सेगमेंट बातें रेडियो की, जो कि फेसबुक कमेंट्स पर आधारित होता है, उसमें टॉपिक भी हमारे रेडियो से ही जुड़ा हुआ है, तो इससे काफ़ी सारे हमें कमेंट्स मिले हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले हैं। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले कमेंट्स की, जो हमें लिख भेजा है संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा, समस्त सोनगरा परिवार ने सिरसिला जिला चूरू राजस्थान से। ये लिखते हैं, डिजिटल युग में रेडियो अपनी सर्वसुलभता, विश्वसनीयता और पोर्टेबिलिटी के कारण खास बना हुआ है। ये बिना इंटरनेट या हाई स्पीड डेटा के भी सबसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचता है और आपातकालीन स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा में जब इंटरनेट और फोन नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं, तब रेडियो ही भरोसेमंद सूचना का एकमात्र जरिया बचता है। आज रेडियो सिर्फ पुरानी डिवाइस तक सीमित नहीं है, अब ये ऐप्स, कार इन्फोटेनमेंट सिस्टम और स्मार्ट डिवाइसेस के माध्यम से भी सुना जा रहा है। रेडियो आज भी लोकप्रिय है क्योंकि ये डिजिटल युग की जरूरतों के अनुसार खुद को बदल रहा है। रेडियो विशेष रूप से अपनी जीवंतता के कारण पसंद किया जाता है, जहां श्रोता सीधे आरजे से जुड़ते हैं, जो एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाता है। डिजिटल युग में रेडियो एक ऐसे माध्यम का मूल्यांकन करता है जिसने न केवल नए तकनीकी युग की चुनौतियों का सामना किया है, बल्कि वास्तव में अपनी पहुंच का विस्तार भी किया है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि डिजिटल युग में भी रेडियो जो है खास क्यों बना हुआ है और आपातकालीन स्थितियों में भी किस तरीके से एक भरोसेमंद सूचना का एकमात्र जरिया बनता है और इस डिजिटल युग की जरूरतों के अनुसार वो अपने आप को किस तरीके से ढाल रहा है और एक आरजे के साथ सीधा व्यक्तिगत जुड़ाव जो है वो किस तरीके से रेडियो स्थापित किए हुए है और तकनीकी युग में चुनौतियों का सामना किस तरीके से करते हुए रेडियो आज भी जीवंतता का उदाहरण पेश कर रहा है। आपने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बातें करेंगे इसके बारे में, और लेकिन लिए चलते हैं आपको छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का खास सेगमेंट हमारा रहता है बातें रेडियो की। जी दोस्तों, आज का हमारा खास टॉपिक भी हमारे रेडियो से जुड़ा हुआ है, डिजिटल युग में भी रेडियो क्यों है खास, जिसके सिलसिले में हम बात कर रहे हैं हमारे श्रोता साथियों के द्वारा चुनिंदा कमेंट्स की, जिसमें अगला अगर हम कमेंट देखें तो वो है बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार का, जो हमें लिखते हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। ये लिखते हैं कि आज भी खास है रेडियो, डिजिटल के इस दौर में, इंटरनेट के इस जाल में, आज भी वह बात है रेडियो के सुर और ताल में। स्क्रीन की वो चकाचौंध आंखों को थका देती है, पर रेडियो की धीमी आवाज सुध-बुध भुला देती है। वह आकाशवाणी का गूंजना, वो खबरों का संजीदा अंदाज, विविध भारती के वो पुराने गाने और अमीन सयानी की आवाज। नहीं चाहिए कोई तार इसे, हवाओं में इसका बसेरा है, चाय की चुस्की के साथ रेडियो से ही होता सवेरा है। दूर दराज के गांवों में या फिर शहर की तंग गलियों में, खेत खलिहानों की मिट्टी में या बागों की खिली कलियों में, यह किसानों को मौसम बताता, बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाता, बिना देखी ही यह हर दिल से एक गहरा रिश्ता है निभाता। स्मार्टफोन की इस दुनिया में यह पीछे छूटा नहीं यार है, एफएम बनकर यह गूंज रहा, कार में भी इसका अधिकार है। सदियां बदलती रहेंगी मगर इसका अंदाज पुराना न होगा, मनोरंजन की दुनिया में भी कभी फीका यह तराना न होगा। जी बहुत ही प्यारी सी भावनाएं जो है वो आपने कविता के माध्यम से सभी श्रोता साथियों के साथ शेयर की है आज के हमारे खास सेगमेंट बातें रेडियो की में। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने रेडियो का यूं कहे बखान किया है, बहुत ही प्यारी लफ्ज़ों के साथ में ये आपने कविता लिखी है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगला कमेंट अगर हम देखें तो वो हमें लिखा है

सतीश अनेजा बिमला अनेजा ने चंडीगढ़ से ये लिखते हैं कि नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन जी, आपको भी नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। ये लिखते हैं, डिजिटल युग में रेडियो का अहम योगदान है क्योंकि अब हम इसे ऐप के जरिए चलते फिरते सुन सकते हैं। देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ मौसम का हाल और संगीत का हर पल साथ सुकून देता है। सोशल मीडिया का युग चल रहा है लेकिन रेडियो का कोई सानी नहीं। रेडियो से बेशुमार श्रोताओं के आपसी रिश्ते बने हैं जो मजबूत है। रेडियो रूह की खुराक है, सच्चा दोस्त है। जी हाँ, ये आपने बहुत ही सही बात कही है कि रेडियो जो है वो एक रूह की खुराक है, सच्चा दोस्त है, सबके साथ जुड़ता है, सबको समान रूप से लेकर चलता है और सबके लिए कुछ अच्छे गाने, कुछ मौसम के हाल। और जो सोशल मीडिया के युग में भी रेडियो जो है वो आपका साथी बना हुआ है, ये बात सुन के हमें बहुत ही खुशी होती है। आपने प्यारा सा कमेंट किया आज के हमारे सेगमेंट बातें रेडियो की में, डिजिटल युग में भी रेडियो क्यों है खास आज का हमारा विशेष टॉपिक है। आपने कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आगे भी बहुत सारी बातें होंगी, उसके लिए चलते हैं एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का खास सेगमेंट हमारा रहता है बातें रेडियो की, जिसमें आज की टॉपिक डिजिटल युग में भी रेडियो क्यों है खास, इसके बारे में हम श्रोता साथियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और इसके अगले पड़ाव में हमें लिखते हैं विष्णु मिशकिन, रितिका मिशकिन, वाणी आरव, चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, सोनी, आरोही, प्रियांशी, सोलापुर, महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं कि आज मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है, फिर भी रेडियो की अपनी एक अलग पहचान और अपनापन है। रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि आवाज़ों से जुड़ा एहसास है। जब आंखें थक जाती है तब भी रेडियो साथ निभाता है। काम करते हुए, सफर में, खेतों में, रात की तन्हाई में रेडियो बिना ध्यान भटकाए दिल तक पहुंचता है। रेडियो की सबसे बड़ी खूबी है उसकी सादगी और सच्चाई। ये बिना दिखावे के लोगों को जानकारी, संगीत, समाचार और भावनाओं से जोड़ता है। डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, वहीं रेडियो आज भी रिश्तों की गर्माहट बनाए हुए हैं। एक आरजे की आवाज, श्रोताओं के संदेश, पुराने गीत और छोटी छोटी बातें, ये सब मन को सुकून देते हैं। रेडियो हमें ये एहसास कराता है कि तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, इंसानी आवाज का अपनापन कभी पुराना नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, जो सिर्फ और सिर्फ रेडियो और उसके श्रोता साथी ही समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में जो तालमेल है वो किस हद तक हो रहा है और कितने पुराने समय से ये तालमेल चलता आ रहा है। जब मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं हुआ करते थे, तब भी रेडियो का जो अपनापन है, रेडियो की जो पहचान है, वो अपने श्रोता साथियों से ही हो रही है। और जैसा कि आपने कहा कि रेडियो एक मशीन नहीं बल्कि आवाज़ों से जुड़ा एहसास है, और यही रेडियो की सबसे बड़ी खूबी भी है कि वो इसी सादगी के साथ, इसी सच्चाई के साथ आप लोगों तक जानकारी पहुंचाता है, संगीत साझा करता है और भावनाओं से जोड़ता है। और इसी के साथ में अगला कमेंट हमें मिला है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का, रघुनाथपुरा जिला, श्रीगंगानगर, राजस्थान से। वो हमें लिखते हैं कि कार्यक्रम बातें रेडियो की पेशकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, आज का टॉपिक बहुत सुंदर है। जी आपको भी नमस्कार और शुक्रिया। डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी सुलभता, स्थानीय जुड़ाव और भरोसेमंद समाचारों के कारण बेहद खास बना हुआ है। ये स्मार्टफोन या इंटरनेट की अनुपलब्धता में भी काम करता है और स्मार्ट स्पीकर या पॉडकास्ट के रूप में डिजिटल तकनीक के साथ तालमेल बिठाकर विकसित हुआ है। डिजिटल युग में रेडियो के खास होने के इन्होंने मुख्य कारण भी बताए हैं। ये लिखते हैं कि सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच और आत्मनिर्भरता। रेडियो के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, ये भारत के दूर दराज के कोनों तक पहुंचता है और बिजली कटौती या प्राकृतिक आपदा के दौरान भी काम करता है। स्थानीय जुड़ाव और भरोसेमंद आवाज। FM और सामुदायिक रेडियो स्थानीय भाषा, संगीत और समाचार प्रदान करते हैं, जो स्थानीय समुदायों को जोड़ते हैं। संकट के समय रेडियो को एक भरोसेमंद सूचना स्रोत माना जाता है। डिजिटल रूप में, नए अवतार के रूप में, अब रेडियो केवल ट्रांजिस्टर तक सीमित नहीं है, ये इंटरनेट रेडियो, स्मार्ट स्पीकर और पॉडकास्ट के माध्यम से श्रोता कभी भी, कहीं भी अपनी पसंद का कंटेंट सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने की है। और इसके साथ में ये लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी परिवार को सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हैं, आपको भी और सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आकाशवाणी परिवार की ओर से आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने की ढेरों सारी बधाइयां। जी, आपने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें जो है वो डिजिटल युग में रेडियो किस तरीके से आप लोगों के बीच में खास बना हुआ है, कितना खास जुड़ाव जो है वो रेडियो के साथ आप लोगों का है, इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उसके लिए आपका आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बातें करेंगे, फिलहाल ये चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
6: जी दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है युवाणी और आज का खास सेगमेंट रहता है बातें रेडियो की, जो कि फेसबुक कमेंट्स पर आधारित होता है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल युग में भी रेडियो क्यों है खास। जी हाँ दोस्तों, और इसी टॉपिक को लेके श्रोता साथी जो है, बहुत से श्रोता साथियों ने हमें कॉमेंट किए हैं और इसी कड़ी में अगला कॉमेंट हमें लिखते हैं राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, सादुल शहर श्रीगंगानगर से। ये लिखते हैं कि हमारी नज़रों में तो रेडियो का महत्व आज भी बरकरार है, लेकिन सच्चाई ये है कि युवा पीढ़ी रेडियो की तरफ बहुत कम ध्यान दे रही है और डिजिटल युग में मोबाइल और इंटरनेट पर ज्यादा रुझान युवाओं का बढ़ता जा रहा है, लेकिन रेडियो का महत्व आज भी बरकरार है, क्योंकि रेडियो में हर चीज ओरिजिनल होगी और विश्वसनीय समाचार, गीत संगीत, नाटक रूपक वार्ताएं, किसानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां और से नहीं मिल सकती है। रेडियो के साथ जो एक बार जुड़ जाता है, वो रेडियो उनके लिए जीवन भर का साथी बन जाता है, लेकिन युवाओं को रेडियो के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। चूंकि इंसानों में युवाओं का रुझान रेडियो की प्रति कम होता जा रहा है, यह चिंता की बात है। हम सभी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और रेडियो हमेशा हमसाया बनकर साथ निभाने वाला एक सच्चा दोस्त होता है। जी हाँ, आपने बहुत ही सही बात कही कि रेडियो जो है वो हमसाया बनकर आप सभी का साथ निभाने वाला एक सच्चा दोस्त है, जहाँ आपको हर एक चीज़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आप रेडियो के साथ जुड़ते हैं और इस डिजिटल युग में भी आप रेडियो के साथ उसी तरीके से जहां आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि रेडियो का जो युग है वो भी बदल रहा है और आज रेडियो जो है वो आप ऐप्स के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, लाइव स्ट्रीम्स के माध्यम से सुन सकते हैं। तो इस बदलते युग में भी अगर आप रेडियो का साथ दे रहे हैं तो आप एक सच्चे दोस्त की तरह रेडियो के साथ बने हुए हैं। और अगला कमेंट हमें लिख भेजा है TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप मोहाली चंडीगढ़ से और साथ ही शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज कालका से। ये लिखते हैं कि रेडियो का सबसे बड़ा गुण उसकी सादगी है। इसके लिए न तो महंगे डेटा पैक की ज़रूरत होती है और ना ही किसी हाई स्पीड इंटरनेट की। छोटा सा ट्रांजिस्टर या मोबाइल का इनबिल्ट रेडियो बिना किसी बफरिंग के सूचनाएं और मनोरंजन पहुंचाता है। फेक न्यूज के दौर में आज भी लोग सटीक समाचारों और आधिकारिक घोषणाओं के लिए रेडियो पर भरोसा करते हैं। संकट या प्राकृतिक आपदा के समय जब मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाते हैं, तब रेडियो ही संचार का एकमात्र सशक्त माध्यम बना रहता है। TV या सोशल मीडिया के विपरीत रेडियो आपकी आंखों और हाथों को स्वतंत्र रखता है। गाड़ी चलाते समय रेडियो, रसोई में काम करते समय या खेतों में मेहनत करते हुए भी आप इसके साथ जुड़े रह सकते हैं। ये स्क्रीन की थकान से बचने का बेहतरीन जरिया माना जाता है। रेडियो के साथ एक मानवीय स्पर्श जुड़ा होता है। उद्घोषक की आवाज सुनने वालों को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देती। पुराने फिल्मी गीत, गजलें और फरमाइशी कार्यक्रमों का अपना एक अलग ही आकर्षण है जो श्रोताओं को यादों के गलियारे में ले जाता है। आज भी भारत के कई ग्रामीण और दुर्गम इलाके ऐसे हैं जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित है। वहां रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे प्रभावी और सस्ता माध्यम है। डिजिटल क्रांति ने रेडियो को खत्म करने के बजाय उसे डिजिटल रेडियो और पॉडकास्ट जैसे नए पंख दिए हैं। इससे इसकी पहुंच और भी व्यापक हो गई है। जी बिल्कुल, जहां से रेडियो की शुरुआत हुई थी और आज के इस दौर में भी रेडियो का आपके साथ जुड़ाव इसी तरीके से बना हुआ है, ये बहुत ही अपने आप में खास है। और जिस तरीके से रेडियो के साथ एक मानवीय स्पर्श जुड़ा हुआ है उसमें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता है हमारा आप सबका प्यारा रेडियो, और साथ ही साथ आपकी यादों में भी इसी तरीके से जगह बनाए हुए है ये प्यारा सा रेडियो। और डिजिटल क्रांति में भी रेडियो को खत्म करने के बजाय एक नए दौर के साथ सामने लाके खड़ा किया है, जिससे इसकी पहुंच जो है वो और भी ज़्यादा सभी जगह बनी हुई है। इंटरनेट की पहुंच सीमित हो सकती है लेकिन रेडियो की जो पहुंच है वो उसी तरीके से बनी हुई है। आपने बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, रेडियो जो है वो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि समाज की आवाज़ भी है। रेडियो की सबसे खास बात है उसकी सरलता। इसे चलाने के लिए तेज़ इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, महंगे उपकरणों की ज़रूरत नहीं और न ही आंखें स्क्रीन पर टिकाए रखने की मजबूरी। आप काम करते हुए भी रेडियो को सुन सकते हैं, ड्राइविंग करते हुए भी, खाना बनाते हुए भी, या फिर रात की तन्हाई में चुपचाप उसकी आवाज़ के साथ मुस्कुरा सकते हैं। और डिजिटल युग में रेडियो ने खुद को बदला भी है और समय के साथ आगे भी बढ़ा है। अब रेडियो सिर्फ ट्रांजिस्टर तक सीमित नहीं रहा है। एफएम चैनल्स, इंटरनेट रेडियो, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और मोबाइल एप्स के जरिए रेडियो ने नई पीढ़ी तक अपनी पहुंच जो है वो बनाई है। दोस्तों, आज सवाल ये है कि जब हर हाथ में स्मार्टफोन है और लाखों वीडियोस मौजूद है, जब गाने सुनने के लिए इतने सारे ऐप्स हैं, तो फिर रेडियो की क्या ज़रूरत है? दरअसल यही रेडियो की सबसे बड़ी ताकत है कि रेडियो सिर्फ कंटेंट नहीं देता, वो जुड़ाव देता है। रेडियो सिर्फ सूचना नहीं देता, वो एहसास देता है। आज भी जब कोई आरजे मुस्कुराकर कहता है, दोस्तों आप सुन रहे हैं, तो सुनने वाले को लगता है जैसे कोई अपना उससे बात कर रहा हो। और पुराने दौर में भी हमने देखा होगा कि लोग रेडियो के आसपास बैठ जाते थे। किसी को गीतों का इंतजार रहता था तो किसी को समाचारों का। गांव में खेतों के बीच रेडियो बजता था। बरसों में सफर के दौरान रेडियो साथी बनता था और त्योहारों की रौनक भी रेडियो के गीतों से बढ़ जाती थी। और साथ ही साथ अगर रेडियो जो है वो आपदा के समय मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाएं, शिक्षा, खेती किसानी और स्वास्थ्य जैसी ज़रूरी जानकारियां पहुंचाने में रेडियो ने हमेशा से ही अहम भूमिका निभाई है। कोरोना महामारी के दौरान भी हमने देखा कि कैसे रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई, उन्हें जागरूक किया और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। गाँव में आज भी कई लोग रेडियो के जरिए दुनिया से जुड़े रहते हैं। जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित है, वहां रेडियो आज भी उम्मीद की आवाज बनकर मौजूद है। और दोस्तों, रेडियो की एक खूबसूरती ये भी है कि यहां कल्पना जीवित रहती है। टीवी सब कुछ दिखा देता है, लेकिन रेडियो सुनने वाले के मन में तस्वीरें खुद बनती हैं, आवाजें कहानियां बन जाती है और शब्द एहसासों में बदल जाते हैं। शायद यही वजह है कि रेडियो कभी पुराना नहीं होता। तकनीक बदलती है, माध्यम बदलते हैं, लेकिन इंसानी भावनाएं नहीं बदलती और रेडियो इन्हीं भावनाओं से जुड़ा हुआ माध्यम है। और आज के इस खास विषय पर हमारे श्रोता साथियों ने भी अपने बेहद सुंदर और दिल को छू लेने वाले विचार साझा किए। किसी ने लिखा कि रेडियो उसके बचपन की यादें हैं, किसी ने कहा कि आज भी सुबह रेडियो सुने बिना दिन अधूरा सा लगता है, तो किसी ने माना कि डिजिटल दुनिया भी रेडियो सबसे सच्चा और सरल साथी है। और बहुत सारे कमेंट्स, खास कमेंट्स जो है वो हमने पढ़े और आपकी राय जानी और महसूस किया कि आखिर रेडियो आज भी लोगों के दिलों में इतनी खास जगह क्यों रखता है। आप भी आकाशवाणी चूरू पेज पर विजिट कर सकते हैं और हर गुरुवार को होने वाले हमारे खास सेगमेंट बातें रेडियो में हिस्सा ले सकते हैं, जहां आपके चुनिंदा कमेंट्स जो हैं वो शामिल किए जाते हैं और भी बहुत सारी जो ज़रूरी सूचनाएँ हैं वो आपके साथ साझा की जाती हैं। और फिलहाल प्रोग्राम से जाने की इजाज़त दीजिए आपकी दोस्त शालिनी को। नमस्कार।

आकाशवाणी केंद्र चुरू से किया गया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से आज और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। शाम 6:10 पर सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीत। किसान और बागवान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी शाम 7 से। चर्चाएं होंगी किसान उत्पादक संगठन, जायद सब्जियों की उचित देखभाल, साथ ही आप सुनेंगे कुछ लोक रचनाएं भी। शाम 7:30 और 9:15 पर आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से लोक संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 8 सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 9:30 से आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से कंट्री वाइड और इनसाइट्स कार्यक्रम। रात्रि 10 सुनिए आकाशवाणी जयपुर से कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। 10:30 पर आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से सुगम संगीत का कार्यक्रम।

कल की पहली सभा में 6:10 पर कार्यक्रम होगा चिंतन, कर्तव्यों का पालन बनाता है चरित्रवान। 6:15 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:45 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। 7:20 ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 7:20 पर। कल आप सुनेंगे अध्याय 376। सुबह 7:30 पर नमस्कार चुरू कार्यक्रम में सुनिए चर्चाएं, डायरी लिखना एक बेहतरीन आदत, संतुलित आहार के फायदे और जानकारी दी जाएगी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। 9:10 पर सुनिए देशगान। 9:15 पर कार्यक्रम होगा धरा की पुकार, इसमें चर्चा होगी जलवायु परिवर्तन पर, वार्ताकार होंगी निशा। 9:30 पर सुनिए श्रोताओं के ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। सुबह 10 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दोपहर 12 सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

बार बजकर 30 मिनट पर माटी के स्वर कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे उमेश सिंह सैनी और साथियों से कुछ लोक रचनाएं। दोपहर 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में सुनिए चर्चाएं, हौसले और विफलता कैसे जीवन को आगे बढ़ाती है। समय समय पर स्वास्थ्य जांच है जरूरी, जानकारी दी जाएगी पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत। उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन, साथ ही चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर भी। दोपहर 2:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। FM 100.7 MHz और न्यूज़ोन AIR ऐप पर आप हैं आकाशवाणी केंद्र चुरू के साथ शाम के
1: आकर्षिता सिंह।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति गंगा जमुना फिल्म से हेमंत कुमार और साथियों की आवाजें, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद।

गंगा जमुना फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ ही फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को लेकर भारत का रुख एकदम कड़ा और स्पष्ट। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की और प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रुख आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वे आज नागौर के मेड़ता में राव दूदा प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद का साथ देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। श्री सिंह ने कहा कि देश अब रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। उन्होंने राजस्थान की धरती को वीर भूमि बताते हुए कहा कि देश की रक्षा में यहां के सपूतों का बड़ा योगदान है।
1: राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सेवाओं के ऊपर, कोई ना कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहां के घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किया।
0: समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महापुरुषों की याद में पैनोरमा बनवाकर नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, महिला, गरीब और किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है।
2: कहते हैं कि हमारे 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक उसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि पंजीकरण उद्योगपति सभी उसमें आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहनें भी आगे बढ़ें। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम करते हैं।
0: इसके बाद रक्षा मंत्री ने जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। रातानाड़ा सर्किल पर हुए इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने पूर्व उपराष्ट्रपति श्री शेखावत को भारतीय लोकतंत्र का चलता फिरता विश्वविद्यालय बताते हुए कहा कि उनका जीवन जनसेवा और सादगी का अद्वितीय उदाहरण है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने की कवायद करते हुए अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का फैसला किया है। राज्यपाल ने आज इस पर अमल करते हुए जयपुर में एयरपोर्ट जाते समय पायलट कार, एम्बुलेंस और दमकल जैसे वाहनों का उपयोग नहीं किया। श्री बागड़े ने आम जनता से भी अपील की है कि वे निजी वाहनों का कम उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण की अपील के बाद राज्य में ईंधन बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कल अलवर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव वर्चुअली जुड़ेंगे। वे भिवाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही सरे खुर्द पाइपलाइन और टपूकड़ा के सरकारी स्कूल में नए शैक्षणिक ब्लॉक का भी उद्घाटन किया जाएगा। उधर प्रशासन स्तर पर भी ईंधन बचाने को लेकर व्यापक जागरूकता देखी जा रही है। इसी कड़ी में पाली में जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आज पैदल चलकर कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गुजरात के सासन गिर में लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये आयोजन अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत किया गया। श्री यादव ने बताया कि आगामी 1 और 2 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहला आईबीसीए सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें 95 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुए, चीता और जगुआर जैसी 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज बीकानेर के सुजान देसर में 40 सरकारी विद्यालयों को स्मार्ट बोर्ड और फर्नीचर वितरित किए। हुडको की ओर से 1.25 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध कराए गए इन संसाधनों से 15,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। श्री मेघवाल ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित नए कमरों और लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। श्री चौधरी ने आज भीलवाड़ा के मांडल में विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किए जा रहे हैं। श्री चौधरी ने अधिकारियों को भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। ये मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका पूरा उद्देश्य पूरे देश में अपडेटेड और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। प्रदेश भर में जनगणना 2027 के तहत डिजिटल स्वगणना का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में पाली जिले का तीखी गांव शत प्रतिशत स्वगणना पूरा करने वाला पहला गांव बन गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. बजरंग सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने मोबाइल के माध्यम से स्वयं अपना पंजीकरण कर इस प्रक्रिया को पूरा किया है। इस गाँव की ये उपलब्धि अन्य गाँवों के लिए मिसाल बन रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने पिछले 2 दशक में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने आज गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में आपदा के समय लोग एनडीआरएफ की मौजूदगी से सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना गर्व की बात है।
3: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: और अब मौसम। प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान आज और कल बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के साथ साथ शेखावाटी अंचल में तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना है। 17 मई से एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भी अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच 24 घंटों में प्रदेश में मौसम के कई रंग देखने को मिले, जहां राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी और लू का दौर चला। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान फलौदी में रहा, जहां पारा 45.5

2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं राज्य के ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में आज करीब 50 बच्चे दूषित भोजन खाने से बीमार हो गए निजी स्कूल के ये बच्चे पिकनिक मनाने वाटर पार्क गए थे जहां खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुखपाल बराड़ ने बताया कि बच्चों का इलाज जारी है और स्थिति नियंत्रण में है भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 1 जून से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा राज्य के 11 शहरों के 32 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा के प्रवेश पत्र कल से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान अग्निवीर सिपाही फार्मा और धार्मिक शिक्षक सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा ली जाएगी अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं किसी भी सहायता के लिए नजदीकी सेना भर्ती कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से आज किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया इसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी गई अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ विजय सिंह वीर ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए किसान अपने खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश और जैविक कार्बन जैसे तत्वों की सही स्थिति जान सकते हैं और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आतंकवाद को लेकर भारत का रुख एकदम कड़ा और स्पष्ट है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तीसरे चरण की घोषणा की और प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। बाड़मेर देश और दुनिया में थार नगरी के नाम से विख्यात है। सरहदी जिले बाड़मेर में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। जबरदस्त उछाल के साथ जिले में दिन का पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इस सीजन में 48.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर देश में सबसे गर्म स्थान रहा। जिले में प्रचंड गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण लोग बेहाल हैं। दिन के अलावा रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। पंखे और कूलर बेअसर साबित हो रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने सहित कई जतन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के समय में बदलाव किया गया है। स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्यार्थियों के लिए समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिले के प्रभारी सचिव डॉ. रोहित गुप्ता बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में पीने के पानी, बिजली, एलपीजी आपूर्ति, हीट वेव से बचाव और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सरकारी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवा वितरण व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। प्रभारी सचिव ने ग्राम पंचायत रामसर का कुआं में विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कामों का जायजा लिया। श्री गुप्ता ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने पिछले दिनों बाड़मेर की नई जिला कलेक्टर के रूप में पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बाड़मेर में जसदीर तालाब स्थित शिव शक्ति धाम में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आयोजित मुख्य समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। इस बीच विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई, चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल और जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बीती दिनों रेल मंत्रालय की ओर से बाड़मेर को विशेष रेल सेवा की सौगात दी गई। ये रेल सेवा बाड़मेर और हरिद्वार के बीच शुरू की गई है। इसके संचालन से हरिद्वार की धार्मिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुविधाजनक यात्रा का फायदा मिलेगा। ये रेल सप्ताह में 2 दिन बाड़मेर से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार और हरिद्वार से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी। रेल सेवा की सौगात मिलने पर स्थानीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोगों को बधाई दी। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एलईडी ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोकगीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आमजन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिले में पिछले दिनों हाली अमावस परंपरागत रूप से मनाई गई। इस पर्व को लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। हर साल वैशाख महीने की अमावस्या हाली अमावस के रूप में मनाई जाती है। ये किसानों का मुख्य पर्व है। इस अवसर पर किसानों द्वारा सांकेतिक रूप से खेतों की जुताई करते हुए सुकाल की कामना की गई। इस मौके पर हर घर में बाजरे का खींच और गुड़ की गलवोणी बनाई गई। इस बीच पारंपरिक खेल औंधल घेटों की धूम रही। इसके साथ ही बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो आतंकवाद रा बारा माय भारत रो रुख एकदम साफ अर करडो राज्यपाल हरिभाव बागड़े ईंधन बचावन सारू जनताओं खुदरी गाड़ियां काम ले उनो कम कर और सार्वजनिक परिवहन न बधावो देवन बाबत कहो चुनाव आयोग वोटर लिस्टा रा पुनरीक्षण रा काम SIR रा तीजा दौर रो ऐलान कीनो और प्रदेश माय आवता दिना पारो थोड़ो उतरण रा आसार समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो है कि आतंकवाद रे खिलाफ भारत रो रुख एकदम साफ है वे आज नागौर जिला रा मेड़ता माय राव दूदारी मूरत रा अनावरण जलसा माय बोल रहा है रक्षा मंत्री कहो कि भारत आतंकवाद रा सगान मुंह तोड़ जवाब देवन रो बूतो रखे है वे कहो कि देश अब सरहद री हिफाजत तू जुड़िया साजो सामान रा मामला माए खुद रे पान उबो फेरियो है रक्षा मंत्री राजस्थान री जमीन वीर भूमि बताता था का कहो कि देश री हिफाजत रा काम माए अठेरा सपूतों रो मोटो योगदान है
2: राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है जब भी मैं कहीं जाता हूं सेवाओं के ऊपर कोई ना कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है यहाँ के घर घर से फौजी निकलते हैं आज भी हमारी इस सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किया
1: राजनाथ सिंह महिलाओं रा मान ने समाज री तरक्की सारू जरूरी बतायो और मेड़ता माय मीरा महोत्सव सारू केंद्र सरकार री ओर 5 करोड़ रुपया देवन रो ऐलान कीनो जलसा माय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो

0: राज्य सरकार महापुरुषां री याद माए पैनोरमा बनार नवी पीढ़ी ने इतिहास सु जोड़ रही है। वे कहो कि सरकार नौजवाना महिलावा गरीबा और किसाना रा भला सारू लगातार काम कर रही है।
1: कहते हैं कि हमारे चार जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक उसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि पंचकरण उद्योगपति सभी उसमें आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहनें भी आगे बढ़ें। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम करते हैं।
0: इन पाछे रक्षा मंत्री जोधपुर माए पहलीवाड़ा उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत री मूर्त रो अनावरण कीनो। रातानाड़ा सर्किल माथे राखी जिया जलसा माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही मौजूद रहा। इस मौके श्री सिंह भैरव सिंह शेखावत ने भारत रा लोकतंत्र रो चाल तो फिर तो विश्वविद्यालय बताता था का कहो कि वारी जिंदगी जन सेवा और सादगी री बेहतरीन मिसाल है। इस मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि भैरव सिंह शेखावत सियासत ने सेवा रो जरियो बनायो। लाडला दिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान्यू करीची अपील पाछे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ईंधन बचावन रा मकसद वारा आधिकारिक काफिला माए गाड़िया री तादाद कम करन रा हुकम दीना है। राज्यपाल आज जयपुर हवाई अड्डा ओढ़ी जाती बगत आगे चालन वाली गाड़ी, एम्बुलेंस और दमकल काम नी लीनी। श्री बागड़े जनता हुई खुदरी गाड़ियां कम काम लेवन सागे सार्वजनिक परिवहन ने बधावो देवन री अरज कीनी। काल अलवर जिला माए न्यारी न्यारी विकास योजनावां जनता ने सौंपण रे मौके राख्या जावण वाला कार्यक्रम माए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही वर्चुअल तरीका जुड़ेला। इस दौरान भिवाड़ी माए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट री शुरुआत करी जावेला। इस आगे सरे खुर्द पाइप लेन और टपूकड़ा री सरकारी स्कूल माए नुआ शैक्षणिक ब्लॉक रोई उद्घाटन करियो जावेला। ईंधन बचावन रे बारा माए जाग जगावन सारू पाली माए जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी और SP मोनिका सेन आज पैदल चाल और दफ्तर पुग्या। जिला कलेक्टर सप्ताह माए एक दिन पैदल या साइकिल ओन दफ्तर जावन रो फैसलो कीनो है। नई दिल्ली माए 1 और 2 जून ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माए पहलो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA सम्मेलन रखियो जावेला। इनरी तैयारियां रा सिलसिला माए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज गुजरात रा शासन गिर माए लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम रो उद्घाटन कीनो। ई मौके यादव कहो कि IBCA रो मकसद बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सरीखा बिल्ली प्रजातिरा मोटा जिनावरा ने बचावन माथे विचार करनो है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर जिला रासुजान देसर री 40 सरकारी स्कूला माए स्मार्ट बोर्ड और फर्नीचर दीना। हुडकोरी ओरू करीब 1.25 करोड़ रुपया खर्चों मुहैया कराई जा आ साधनाओं करीब 15,000 विद्यार्थियों ने फायदो फैला। श्री मेघवाल स्कूल माए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का न्यू बनवाई जा नुआ कमरा और लाइब्रेरी रोई उद्घाटन कीनो। राज्य माए पड़ रही जोरदार गर्मी बीच जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी अहलकारा ने पानी री परेशानी वाला हलका माए टैंकरा रे जरिए लगातार पानी री पूर्ति तय करावन रा हुक्म दीना है। वे आज भीलवाड़ा कने मंडल विधानसभा हलका माए पीवन रा पानी जुड़ी करोड़ा रुपया रा खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रा काम री नींव रखी और पूरा व्या काम जनता ने सौंपया। इस मौके वे कहो कि प्रदेश माए पानी री व्यवस्था ने चोखी बनावन सारू सगला जरूरी जतन करया जा रहा है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। निर्वाचन आयोग आज वोटर लिस्टां रा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR रातीजा दौर रो ऐलान कर दिनो। 16 राज्यां और केंद्र रा राज वाला 3 प्रदेशां माए ओ अभियान चलायो जावेला। प्रदेश में जनगणना 2027 रा तहत डिजिटल स्वगणना रो काम चल रियो है। पाली जिला में देसूरी ब्लॉक रो तिखी गांव स्वगणना पूरी करण वालो पहलो गांव बन गयो है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह आ जानकारी दीनी। वे बतायो के गांव वाला शिक्षक उमेश कुमार मेवाड़ा कानियो तकनीकी जानकारी हासिल कर मोबाइल

0: ગૃહમંત્રી કહ્યું કે દેશમાં કણી ઠોળ આપદારી સુરતમાં એનડીઆરએફ રી મોજૂદગીઓ લોક સુરક્ષિત મહેસૂસ કરે હૈ વે કહ્યું કે કિણી સશસ્ત્ર બલને રાષ્ટ્રપતિ ધ્વજ નવાજણો વાંસારું માથો ઊંચો કરણ રી બાત હુએ હૈ
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा साहस शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: अरे बे मौसम प्रदेश में पारो थोड़ो उतरन रा आसार है। आज और कल बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग और शेखावाटी हल्का में जोरदार बायरो बजन सागे कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। ई पाछे 17 मई रजरा आतुणी हल्का माय पारो ओजू चढ़बा रा आसार है। प्रदेश लंकाऊ उगनी हल्का माय तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस रे आरएसआर रेवन री संभावना है। ई बीचे लाडला 24 घंटा माय राज्य माय कठे कठे बादलां री गाज और आंधी सागे बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब लाडला 24 घंटा माय सब उम्बत्तो तापमान फलौदी माय 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। फौज माय भर्ती सारू ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई 1-12 जून ताई फैला। प्रदेश रा 11 शहरा रा 32 केंद्रा माते वेवन वाली ई परीक्षा रा एडमिट कार्ड कालू आधिकारिक वेबसाइट टू डाउनलोड करिया जा सकेला। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के अजमेर अलवर बीकानेर जयपुर और जोधपुर समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा केंद्रा माथे अग्निवीर सिपाही फार्मा और धार्मिक शिक्षक सरीखा न्यारा न्यारा ओहदा सारू आ परीक्षा ली जावेला। भरतपुर रा केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र री ओरों सिखावन शिविर लगार किसाना ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड रे बारा माय जानकारी दीरी जी। अनुसंधान निदेशालय रा निदेशक डॉक्टर विजय वीर सिंह बतायो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड रे जरिए किसान खेत री मिट्टी माय नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश और जैविक कार्बन सरीखे चीजां री ठाक कर सके है। शिविर माय किसाना ने सरसों री उन्नत किस्मा मिट्टी री जांच जैविक खेती और बागवानी प्रबंधन रे बारा माय विगतवार जानकारी दीरी जी। बुनकराओं जुड़ियो जयपुर ग्रामीण दफ्तर हथकरघा बुनकरा ने जिला स्तर रो नकद इनाम देवन सारू अर्जियां मांगी है। लाडला 3 साल हथकरघा बुनाई रो काम करन वाला बुनकर इनाम सारू अर्जी दे सके है। अर्जियां काल ताई जिला उद्योग केंद्र माय जमा कराई जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो आतंकवाद रा बारा माय भारत रो एकदम साफ और करड़ो रुख। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ईंधन बचावन सारू जनताओं खुदरी गाड़ियां काम लेवनो कम कर और सार्वजनिक परिवहन ने बधावो देवन बाबत कहो। चुनाव आयोग वोटर लिस्टाना पुनरीक्षण रा काम एसआईआर रा तीजा दौर रो ऐलान कीनो। और प्रदेश माय आवता दिना पारो थोड़ो उतरन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी चुरू से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सगले किसान भाई बहना ने, लाडे श्रोता ने, टाबरा ने, बड़े बुजुर्ग ने, सह ने, भाई राजकुमार का निशु
5: और भाई अर्जुन का निशु, मोकड़ा मोकड़ा राम राम, राम राम राजकुमार भाई, राम राम
4: राम राम। देखो अब की बार तो मौसम को मिजाज है, वो यहाँ के लोग समझ बारह
5: बारह अलग ही मिजाज हो रहे भी बोले।
4: अब जे आदमी तावड़ किच पेट माजा ने, तो वो देखे के भाई कद मतलब आपने ठंडी छाया मिले। और किसान आदमी है तो किसान आदमी देखो बिन तो तावड़ में निकलना ही पड़ती,
5: निकलना पड़ती साहब
4: भाई। अब जहाँ रबी फसलों को काम तो आप लगभग कर लियो, और अब क्या है कि आपने जो कि खरीफ की फसल है बाकी पूर्व तैयारी चलती है,
5: चल रही है।
4: तो पूर्व तैयारी में एक तो देखोगे खेत में खाद गिरनी बहुत जरूरी है,
5: जरूरी है।
4: अब कई बार क्या हुआ अर्जुन भाई के देखने में आवे कि किसान है जका ट्रैक्टर या मशीन हुई तो खाद बीजगी, हाँ। बठब्बे के है गए बे मत ही वो खाली जी बटन दबात आई, हाँ। अब आपने चौकी बारिश हो जाए किसान जतानी चेतो करे ने, तो फिर देखो बा खाद गिरनी के काम की बात हुई। खाद तो जदी गिरो कजद बिन एक सार खिंडाई जाए
5: भी। राजकुमार भाई है कि देखो किसान खाद अगर आपके खेत में गिर सी ने तो गिरने के बाद में वो यहाँ सोचेगो कि आपा कम से कम बढ़िया बाई दिरा दिया, बढ़िया पाड़ गिरा दिया, जब तो है भी को भाई तो। और अहीं आप खाद गेर दी चाहे पिने पूरी एकदम खिंडा दियो चाहे से मत खिंडाओ भी का मैंने कहा जी। अब आप अंधी का मौसम अबार चला यार के अंधी आओ तो वहाँ खाद तो भेड़ी हो जा, तो खाद गेरने को जब भी स्वाद है का आप पूरे खेत में एकदम खाद गेर दी, खाद गेरने के बाद में गहरी जुताई कर दी आप, तो आपने वहाँ खाद अबार के टाइम कामयाब है
4: भाई। देखो आज की मई की जगह पहाड़ है ने, हाँ एक ही तो देखो होडी को नहीं है कह विशेष तौर से अपनी खरीफ फसलों के लिए, हाँ। और आ पहाड़ है जी आगे ताणी के काम दे
5: काम किए,
4: क्यों कह अब देखो सिंचाई की सुविधा होगी, सिंचाई की सुविधा होगी तो फुहारा चले रात और दिन, हाँ। अब भी उनकी है कह जमीन प्रजा पक्की या मान लो कि पक्की थी प्रजा के लकड़ी रुपए को नहीं
5: पत्थर जब,
4: तो जमीन को क्या है कह पेट पाड़ना बहुत जरूरी है,
5: जरूरी है।
4: अब गर्मी से क्या हुआ है बहुत सी जो कि लटार कीट हुए ने वह मर जावे और वह जब मर जावे जना के अपनी जमीन है जो कि बढ़िया हो जावे
5: बढ़िया हो जावे।
4: और एक सागर सागर देखो एक बात और कह पहली तो क्यों तो कह भाई ऊंटा से बिजाई हुआ करती जना एक आदमी क्या है कि ऊंट का आगे अलसोट भी कर लिया कर तो आवड़ी छाड़ भी कर लिया कर तो कोई बोझो डाली बा भी कर दिया कर तो कोई ज्या कोई दरखत केलियो मालियो अड़क थड़क बदरे तो बी छांगण भी जाया करती। अब देखो कह बाबा तरीक ने अब ट्रैक्टरा से बिजाई होसी तो ट्रैक्टरा से बिजाई होसी तो वो काम की है का अपन पहली करना बहुत जरूरी है
5: बहुत जरूरी है।
4: अब ट्रैक्टर वाला को बेरो को नहीं कह वो दिन में आपने बाइक करे रात ने करे वो भी बेरो को नहीं तो फिर देखो अड़ी चोट की को नहीं है।
5: देखो राजकुमार भाई कमान थे एक बहुत बढ़िया बात था एक जी हमारे पुराने जमाने में पहाड़ से बात था खेत बात था आगे भी का बोझ डाली काटता भी टाइम में अगर आप आइए देखता कि आ खेत में अगर जानटी है जानटी को बहुत जो है बिना आपा पाड़ लेता बिना कह देता भाई आठ एक जानटी है भी लकड़ी खड़ी कर देता या कोई अन्य आपने कोई खेत में दरख तुक तो आप यहाँ कह देता भाई इन ताल में आपका ठीक लड़ाई काट ली तू। लेकिन अब भाई कह आपा खेत में आ कौन सोचा कह देखो कि आपने भाई कितने दरख तब का नया उग गया है कितना कौन उग गया जहाँ मान लो कोई जानटी उग रही है तो आपा ये ध्यान कौन करा कि ट्रैक्टर कौन कहा भाई आ ट्रैक्टर आ जानटी बचाई है आपा तो यह करा कि भाई बोझा काटे दिया बोले काटे दिया बोले बीज दिया ट्रैक्टर बाद देसी अरे नहीं अगर आपा थोड़ा थोड़ा ध्यान देगा आपा यहाँ देखा कि भाई नई जानटी तैयार हो है तो वो भी देखो आपने खेत के लिए फायदो है क्योंकि कार्बन तत्व जखा भी बने है जमीन में पोषक तत्व बने भाई देखो कि खेत की लूंग भी है जानटी से लूंग भी पड़े है लकड़ी पड़े है भी कमाने यहाँ हल्का पोषक तत्व हो जाए तो जमीन अपनी उतरे को नहीं।
4: भाई देखो अब भी पुराने टाइम के मायने एक बात और भी खेत का मायन किया धन पशु के लिए छोड़ता अड़ावा
5: हाँ
4: तो बाड़ा अंक मान के खींपड़ा भी उग जाता फोगड़ा भी उग जाता और बंग सके केलिए का दरखत भी उग जाता
5: सनिया भी गल जाता
4: और बे की है के बंग के ओटू की है के बे पल जाता और जद आप आड़ा वो काटता ने जद की है आप बने की है चिन्हित कर लेता और बने एक सार
5: बेरो पड़ जाता भैया आपने कौन सो रूख राख होना है कौन सो कोनी राख होना बेरो पड़ जाता आपने।
4: और अब की है कि हर आदमी की है कि तुरंत फायदा चाहे अब देखो कि जिसका पौधा है
5: ना
4: हम आ बात है कि आप अपने खेत में जाके देखा तो आपनी लगाईड़ी जंटी आपन की तीक लाते और आपने बड़गा की लगाईड़ी की तीक लाते कहने का मतलब कि दादो पेड़ लगाओ और पोतो फूल खावे तो अगर आप पौधा लगा दिया तो यहाँ मान लो कि पीढ़िया को राज है जो बढ़ा दियो
5: करा के। और एक राज भाई देखो कह पुराने जमाने यहाँ कहता कह जी हाँ घर का मायने अगर कोई लड़की हो जावे तो खेत का मायने अगर पांच रोड़ा लगा दो अगर भाई लड़की को ब्याह करो भी टाइम पर अगर भाई रोड़ा अगर काट के बेच दियो ना तो भी लड़की को ब्याह हो जा एक वो भी देखो कि पुराने जमाने में खेती को परंपरा होगी थी कि भी खेती का मायने पालता कि फलानी चीज है कि एक जानटी पाली है एक पेड़ पाली है तो वो भी हिसाब से रूटीन बने रहते और आजकल के देखो कि आप लगावा तो कमर काटा ज्यादा तो एक खातर आपने जिका भी खेत में रूख है जो भी है बहुत जो है डाली है बन बचाड़ी रखा और भी को देखभाल भी करा और नया रूख भी आप लगावा।
4: भाई अब थे रोडे की बात चलाई ने तो आपने जिया झूपड़ा बनाता चारों गिर रहने के लिए झूपड़ा बनाता बंक मैन की अगर रोडे की छड़ी काम आती
5: पाल गुंथन है
4: पाल गुंथने बीट को काम मातो फिर किए गए बाती देड़ ने बा छड़ी काम माया करती एर आ किए गए दिमक कब लगे रोड
5: दिमक कब लगे
4: तो एक कमाई देखो वो एक छड़े भी काम आ गई एर थे का जो अगर मान लियो 15-20 साल को अगर दरखत हो गयो तो फिर भी की लकड़ी भी कामयाब
5: हो जाए था
4: बीस दरवाजा बना सका मेज बना सका कुर्सी बना सका साइज की चीज बना सका एर एक बात और है कि रोइडे की लकड़ी है जिसकी मजबूती बहुत है और

0: बात यह है कि भी आप एक बतलावन और तोरा कि भी किसान है, तो किसान है पहली तो की है कि किसान का मोकली जमीन हुआ करती,
1: करते सा
0: तो भी कमाइन की है कि जहाँ चौमास वाली एक फसल बा ले तो और फिर
1: चौमासा ने
0: सोमन
1: टिक तो
0: बाजरी हो जाती
1: हाँ
0: एर बा बाजरी है जो की दाल रोटी के सागर राबड़ी चार प्याजी के सागर खागिर मस्त रहे कर। तो
1: अच्छा
0: अब की है कि जिया जिया जनसंख्या बढ़ी है तो बिया बिया खेत का जोत का कार भी छोटा है,
1: तकनीक ज्यादा बढ़ गई।
0: भाई भाई बंटवारा के बन जमीन तो कम हुई है के एर एक सागर सागर देखो कि सिंचाई का साधन बढ़िया है,
1: बढ़िया सा
0: तो सिंचाई का साधन बढ़िया है तो बिक मायने आपने के है कि हर किसान आ सोचे कि मैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किस तरीके से लेऊं, तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन थोड़ी जमीन है बे में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए क्या करना पड़ती, कभी जहाँ पहली खरीफ की बात आ तो अब रबी की भी बवाल आ गया, एक सागे सागे ओ जो 3-4 महीना को जो बेलप को टेम है
1: हाँ
0: एक मैं जायद की फसल लगावा लग गया और जायद में भी कौन सी कह ज्यादातर सब्जियां
1: सब्जा
0: और फल कुछ मांड कुल का जितना भी सब्जी या फल है भाई जायद का मायन हो जाए। और एक बात और है कि सिंचाई की अगर सुविधा है ने तो ये टाइम क्या है कि कीट रोग रे भी कम लगे
1: कम लागे।
0: गर्मी का मायने। अब अपन क्या है कि अब देखो तलसीर को जो पानी है वो भी सीमित है, भाई कोई चीज ऐसी भी तो है ही को नहीं, तो आपा क्या है कि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली अपनावा कि बेल लगा लिया अपने खेत के मायने तो भी की जड़ में मतलब पानी जावे,
1: पानी जा बूंद बूंद सिंचाई अपना के तरीकों पर।
0: और एक साग साग देखो ग्रीन हाउस भी बनावा लग गया कि जखी सब्जी ने जखे फल ने जखे फूल ने जितो तापमान चाहिए बीतो तापमान आपा क्या है कि बना दिया
1: बना दिया।
0: एर बीस से बाद सब्जी है अच्छी तरीके से लाग जा। अब आपा देखो हाँ कि सब्जी है ना सब्जी का भाव हमेशा पाव में बताई जाए
1: पाव में बताए किलो में कोई पाव में बताया जावे।
0: कि बाजार आप सब्जी लेने जावा तो अगर आपा ने किलो 2 किलो लेनी है तो आपा मतलब किला का भाव पूछा नहीं तो अगलो पाव में बतावे और सीधी जे किलो में बता दे तो सब्जी को भाव सुन चिमक जी आदमी।
1: चमक जाए। एक सगा भी देखो राजकुमार भाई के जी आभार से बात बताई के भी आप पॉली पॉली हाउस बना लिया, तो भी के साथ साथ अगर यहाँ देखा अगर आप ब्लीचिंग को प्रयोग कर लेवा तो भी कमाई ने भी देखो कि अपन पानी अनावश्यक कौन सा क्यों कह भी कमाई नहीं हो जा के अपन भी लंबी बनी तो बूंद बूंद सिंचाई के हिसाब से भी कमाने एक तो सबसे मोटो फायदा ये हो जा कि एक तो पानी बेकार कौन सा, दूसरी बात है कि आपा ने खरपतवार कौन करनी पड़े भी कमाई अगर भी को प्रयोग कर लिया तो। और भी से अब भी जहाँ जहाँ मान लो कि अबार के 3 महीना कमाने आपा कोई भी चीज़ वाली कोई बेल वाली कोई जो भी आपने वर्तमान जो मौसम के हिसाब से आपका क्षेत्र के हिसाब से जो भी काम करे तो वो कारगर साबित होगा क्या जिसकी भी आप ब्लीचिंग को प्रयोग करके अगर बारे हाँ तो भी कमाई ने बहुत मोकड़ो फायदा हो जाओ। ये टाइम जो थे अबार थे बात बताई कि भी सब्जी का भाव सुना देने चिमका है तो अबार के टाइम कमाने जिया मान लो जायज कमाने जो भी आप फसल भाई है जिया मान लो कोई टिंडा बाया कोई लोयो टिंड सीख खरबूजो काकड़ी जो भी आप बारे तो भी कहा देखो अबार 3 महीना का माना भाव बहुत बढ़िया मिला अपन 3 महीना बाद का मैंने तो यहाँ देखा क्या भैया भाव टूट जी सी तो वो तरीको अपनाओ जो को देसी तरीको अपना कि अगर आप काम करेंगे ना तो भी का मोकड़ो भाव ना फायदो भोग और फायदा होगा कि रुपया भी आमदनी है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
0: भाई भाभी है फिर अब जिया जितना भी थे नाम लिए ने मतलब टेंड श्यांगाग लोहे काग काकड़ी काग खरबूजा काग तरबूज काग बिका भाव भी अच्छा रहा है। एक बात और है कि ये गर्म मौसम के मायने स्वास्थ्य वर्धक भी है
1: हाँ
0: कि आपा खेत के मायने 2 तरबूज फोड़ के खा लिया तो जिसो रोजी सी
1: खुशी सा
0: आप तो दूसरो होशी होशी एक सग सग है अपा अगर भी चीज को व्यापार करना एर जखा किसान भाई बीघा 2 बीघा भी खेती करे ने भाई व्यापार ही पक्को करे ट्रालो भर भर के लीजिए शहर का नहीं और शहर का मान इसी गर्मी का मान जाता ही वहां तरबूज बिक जा।
1: बिक जा सा
0: एक का ताजा सब्जी अगर आप अपने खेत में लगा सने तो आप बाजार तक तो ताजा पुगाशिया पुगाशिया एक सागे सागे देखो का आपने मन में भी आत्मविश्वास बने रहो सी का आ तो मैं 1 घंटा पहली आ काकड़ी तोड़ी है

0: हरा चांग केर खारी कोनी एक ही सब्जी बनाओ
1: बनाओ एक मान देखो अब फायदो मोकड़ो फायदो हो जाए अगर राजकुमार भाई का आपने देखी घरा चीज तैयार करेड़ी हो तो अगर आप बिने पहले दिन तोड़ ले चाहे तो वह दूसरे दिन बिछी रहे सी क्योंकि आपा ने बेरो है कि एक मायने आप कौन सी दवाई दी है कौन सी कौन दी आप दे ही कौन आप जैविक तरीके से अपनाई हाँ तो भी कोई अपना फायदा हो चीज भी कोई फायदा हो जाए क्या कोई थे मान लियो का बार के दो पाँच बीघा मैंने काकड़ी बारे की हो रही है कहते भाई मतलब जैविक खेती से तैयार करेड़ी है तो अगर वो बेरो पड़ जाए ना तो राजकुमार भाई थारा कुआ के ऊपर ही है ना लाइन लाग जी सी कर ली भाई 1 किलो माने दे 2 किलो माने दे थे बाबू बोले बाबू मतबूत जो कहते काकड़ी ले जाओ तो वो भी फर्क पड़े भी कमाने अपनों आमदनी को साधन ज्यादा हो जाए
0: भाई देखो कै काकड़ी की टिंडा की रंग थे चर्चा करी ने तो अब में कोई प्रकार को कोई रोग नहीं लगे और सही तापमान आन बनेड़ो मिल बोक रहे और सिंचाई की सुविधा सही रहे और बढ़िया देसी गोबर की खाद अगर रंग पा लाग जा तो अंक लाग लागण लाग जाने भी के बाद में कोई नाज ही गुंजे
1: हाँ
0: भी के बाद के मायने बोरिया भर भर के लिजो बोले
1: ले जाओ सही से
0: और ज्यों आप टेंड सी आज तोड़ी तो 2 दिन बाद में बाई बेला गहू तोड़ के बोले
1: बीस बीती बीस से ज्यादा भलाई तोड़ दो
0: तो कहना मतलब वो है कि अपन देखो कह सक्रिय तो रहना पड़े भाई मेहनत बिना तो कोई काम है ही कोई
1: ये किसान को तो सुबह सिर धूल कमाने हुआ है शाम के तो बिया रहे जल्दी वो देखो आमदनी हो यहाँ को नहीं क्या पैंट पुट शर्ट लगा के कुर्सी बैठ जा बा बात को नहीं राम को राई कह जितनी भी चीज़ है जितनी भी खेती बाड़ी कमाना खुद की मेहनत कर सा खुद को कोई काम कर सा जल्दी आप कामयाब हो सा।
0: और अब देखो गए चचा तो आप और भी करता
1: हाँ
0: पर ब्यू पहले सीमा मिश्रा और साथ गाड़ी एक लोक रचना सुन लिया
1: सुनाओ सा।
0: सुनो सा।

0: अभी अपन सीमा मिश्रा और साथी गाइडी लोक रचना सुनी और अब देखो कि आपने चर्चा करनी दोबारा बढ़ा
1: हाँ
0: कभी किसान है, किसान ने अंधाता कह जाओ।
1: अंधाता कह जा
0: अंधाता क्यों कह जाओ है कि आपने घरा अगर सोने की थाली होती ने तो भी वह अन्न बिना खाली होती
1: खाली रहती
0: भाई। यहाँ थोड़ी है थाली देख डंकार आ जाती।
1: है वो तो खाना पड़े सी पेट में क्यों जाए अटकारा सी।
0: अब बात यह रहे कि एक तो आपा जो भारतीय थे बता रहे हैं कि जैविक तरीके से खेती करा, तो जैविक तरीके से खेती करा तो बिक मायने किया है कि आपन अनाज की जो गुणवत्ता है
1: हाँ
0: वह बनेड़ी रही।
1: बढ़िया डी रेसी
0: भाई पुराने टाइम की बात थारे याद आती होली का हारा के ऊपर खिचड़ो बनाया कर तो
1: बढ़िया करता साहब।
0: एर दूध गर्म होया कर तो भी खिचड़ो बन तो जना भी कमाई नहीं। मान लियो का कुटेड़ी बाजरी दलेड़ी दाल नहीं पटाखा सा बोलता
1: बोलता था
0: ढके यहाँ उछल
1: खट
0: उछल के पड़न लाग जाता। तो
1: पढ़न लग जाता
0: अब आजकल की है कि खिचड़ो बनाओ जो बेरो ही पड़े
1: बेरे को न पड़े
0: कभी खिचड़ो बन रही है लापसी बन रही है कि बेरो ही पड़े।
1: बेरे को भी कमान। आप भी देखोगे राजकुमार है के पुराने जमाने बनते तो आड़ोसी पड़ोसी का बेरो पड़ जाता कभी यहाँ का घर खींचड़ो बन रहा क्योंकि बिकी लपट आती। आजकल तो चाहे थे कोई चीज़ बना लियो कह ज़्यादा जोर की लपट को नहीं है लेकिन पहले के जमाने का वानी हमारे लोग कह बाजरे को अगर आपा बनाता न तो बिकी भी खतर बिखर दी आवाज़ पड़ोसी तर जाती क्योंकि वो जो जैविक तरीके से तैयार होया कर तो हर चीज़ है कह जी मान लो कह पुराने ज़माने में कह करता कि मोटो खाओ और मोटो पैरो भी कह जो भी किसान है अगर जी मान लो कि कोई कहने गाय है भैंस है चोखो बाजरो हेड़ो है तो वो तो देखो कह सुबह से हम रोटी 4 टरकासी बाजरे की अरे जगह का दिनों ही को नहीं है तो वो एक भी यहाँ लेसी ने तो यहाँ देख सी के क्या खवा क्या कौन खवा
0: भाई
1: मेहनत सी है।
0: भाई देखो के बाजरे की आप थी बात करी ने तो बाजरे के मायने घी भी खाए जा सके
1: हाँ
0: के बाजरे की रोटी हो सी तो बने अच्छी तरीके से चौपड़ रे बलाई मिर्कली दो मिर्कली और घेर दे बलाई
1: हाँ
0: घी खाए जो सी एक साग सागे बाजरे की रोटी सागे लगाउनी भी चोखो खाई जाए
1: खाए जा सब
0: एर कद्दे से लगाउन ने वे तो गुड़ रोटी खा लियो बलाई प्याजी
1: गुड़ रोटिया
0: रोटी खा लियो बलाई
1: दूध में चूरी खा लियो जाए
0: दूध में चूर के खा लियो। एक के ही के जिया जिया किसान है जो नवाचार करें बिया बिया अगर वो अनाज की गुणवत्ता ने
1: बनाए
0: अगर
1: रखा है।
0: बनाई डी राख तो नहीं तो आपा देखो का आपने याद आवे के मांगली का अवसर होया करता है ब्याह शादी का और तो बान बैठा कर तो ना कहता के बाजरे की घूगरी बनाऊ
1: बनाओ सा
0: एर बा मीठी गुगरी है ने बिन सही बड़े चाव से खाता
1: बहुत जोर का
0: एर बीरबान ने आज की पल्लम बांध बांध के बिन ले आया करती
1: लाया करती है
0: आजकल है भी तो चाव ही गुन रहे हो।
1: चाह भी गणपी को खाली सूण के बना के घूगरी बना के दियो खाली नाम मात्र है वो घूगरी भी को नहीं पहली के कोई के बान बैठ तो जना के लापसी बना लियो के बाजरे के बना लियो गेहूँ के बना लियो बहुत चाव हो हर चीज़ को भी क्योंकि भी मैंने पोषक तत्व पूरा बनेड़ा रहता भी स्वाद हो जे हमारे लोग अब आपान थे बार बात करी के नई तकनीक आएगी किसाना का नई तकनीक आएगी तो नई तकनीक के मायने कई बार किसान पहले तो देखो कहीं हो जाता हो गए खेत हुआ बड़ा बड़ा बड़ा खेत आ जब वो कहे 5 जना 20 में काम करता 5 जना 20 में काम आजकल एक खेत हो गया छोटा छोटा खेत होने के कारण जी होगा लो कहे कोई भी यहाँ देखा है कि राजकुमार भाई के ने 1 बीघा जमीन है 2 बीघा जमीन है तो आपा जमीन में अपनी कोई योजना भी को फायदा किया लेवा तो भी के खातर सरकार एक नई योजना चलाई है कि भी किसान संगठन योजना बना कि भी कमाने जितना भी छोटा मोटा किसान है एकदम संगठन में जार भी कमाने जो भी अभी ने कोई सामान की जरूरत हो जी हमारे लोग कोई खाद की बीज की दवाई की या कोई मशीनीकरण की तो बिकवान ग्रुप बना की है ना एक बहुत बड़ो क्षेत्र के मायने भी मैंने आमदनी कर सके। हाँ
0: भाई देखो कै संगठन में तो शक्ति है ही और किसान संगठन बना ले तो फिर वह क्या है कि कोई भी चीज खरीदे जाए मान लो खाद खरीदे बीज खरीदे तो बिग मायने वह आराम से बिन खरीद
1: खरीद
0: सके
1: सके
0: और बेचनो वह तो भी वह क्या है बिग हिसाब से बेच सके। तो अपन क्या है कि किसान उत्पादक संघ है आके मायने भी सम्मिलित होना चीज है। और देखो कह चर्चा तो आपा और भी करता पर घड़ी इशारो कर रही है कभी आपा इति बतलाउन कर सका आज के कार्यक्रम में तो फिर मिलना था राजकुमार भाई।
1: और भाई अर्जुन है।
0: देवसी करा।
1: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र चुरू से किया गया। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वाति शर्मा और गौरव जैन की गाई लोक रचना के साथ।

कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुनी स्वाति शर्मा की आवाज़ में ये लोक रचना। आइए आपको सुनवाते हैं सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज़ में ये लोक विजन।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ,
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट,
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध,
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति,
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम,
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में,
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413366097।
2: आकाशवाणी चुरू से समय आप सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनाते हैं सीमा मिश्रा और साथियों की ही आवाज में ये अगली भक्ति रचना

अनुराधा पौडवाल की गाई इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 107.7 MHz पर हम आपकी सेवा में आकाशवाणी चुरू से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ, उदित नारायण की आवाज़, फिल्म का नाम जानम समझा करो। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार अनु मलिक।

जब सुनिए उदित नारायण के साथ साथियों की आवाज, ये दिल आशिकाना फिल्म का ये गाना, समीर का गीत, नदीम श्रवण का संगीत। आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण के गाए कुछ चुनिंदा गाने।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आकाशवाणी चूरू से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, केशर देव तंवर के साथ। अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज, आशिक फिल्म का ये गाना, समीर का गीत, संजीव दर्शन का संगीत।

लीजिए सुनिए उदित नारायण के साथ अनुराधा पौडवाल की आवाज, पृथ्वी फिल्म का ये गाना, जलेश शेरवानी का गीत, बिजू शाह का संगीत।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: आकाशवाणी चूरू से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज, हकीकत फिल्म का ये गाना, गीतकार फैज़ अनवर, संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, उदित नारायण, सुनीता राव और साथियों की आवाजें, गुप्त फिल्म का ये गाना, आनंद बख्शी का गीत, बिजू शाह का संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, आकाशवाणी केंद्र चुरू से, कार्यक्रम है गुलदस्ता।

गुप्त फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता समाप्त होता है। हम आकाशवाणी चूरू से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज़ 9।

0: साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी विप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना

0: अक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

0: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening up Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today. Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS foreign ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy.

बस दीवे, अरे काट झड़ा सो ढेर लगा दिया मिनका तन बस दीवे। छोरा राम धनिया पथने क्या रो दुखड़ो, पथने क्या रो दुखड़ो।

ई छोरा राम धनिया पथने क्यारो दुखड़ो पथने क्यारो दुखड़ो लागिर छोरा राम धनिया तू तो पतलो किस विधि प

थारे दो दो भैंसिया दूधेर छोरा राम धनिया, थारे भाई यारी जोड़ी छोरा राम धनिया, थने क्यारो दुखड़ो लागिर छोरा राम धनिया, ओ थने क्यारो

राजस्थान लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शमीम जोधपुरी की गाई कुछ लोक रचनाओं को। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से पहले कंट्री वाइड और उसके बाद कार्यक्रम इनसाइट्स।

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्रीवाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
2: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा। और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाले केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किया है, और एक AI बेस्ड एक मॉडल लाया है जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो IMD का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको IFS कहते हैं, IITM का ERF कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है। और उसका जो मेन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल, और सेकेंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरा 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है। और AI बेस्ड ये मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 UT में। अब इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी DG मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण करता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रैटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं, इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितना भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो पूर्वानुमान प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
2: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ARG ऑटोमेटिक रेन गॉज है, और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITM का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया है हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है। और उसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने की काम करेंगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
2: एक्चुअली जो पूरे इंडिया के डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किया है इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है, हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुँचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
2: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICAR सेंटर्स हैं और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहाँ पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी क्या आपको एक्शन लेनी है, उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे जो उनका प्रोबेबिलिटी की जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा और इनके क्रॉप तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है।
2: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाए गए हैं। इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, उसके साथ साथ हमने रेडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMRWF का है, उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया, ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए, एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी

0: सेक्टरों के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है, अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। ये एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते रहे हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा है, ERZ डेटा है, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है, ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल या वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है, और उसका साथ साथ भी MNCA जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए, उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शीश, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया, तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें, तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे यूपी में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं, अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं, मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICR सेंटर्स है, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर से है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए, और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगे, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है। हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं, और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फर्दर वो उनका गांव का जो लोग है, जो किसान, उनको फर्दर डिसिमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशु सखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहाँ पे कृषि सखी फसल के फिर उसका गाँव में जो डिसिमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो less than 2 hectare है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजरी के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेज, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे?
0: जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है। हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है, तो

0: हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, जिनके कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन जाता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखने चाहिए, ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शीश, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं, उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट की भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं, ताकि एक विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शीश, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शीश कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में धर्मकांटा फिल्म का यह गाना, मजरू सुल्तानपुरी का गीत, नौशाद का संगीत।

0: लीजिए अब सुनिए शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में पतंगा फिल्म का एक गीत, राजेंद्र कृष्ण का गीत, सी रामचंद्र का संगीत।
1: मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

मुकेश के गए संबंध फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की गाई कुछ गैर फिल्मी गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपकुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की गाई हुई कुछ गैर फिल्मी रचनाएं। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक

इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। कल पहली सभा में सुबह 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।